हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तो हां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तो हां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

तो हाँ सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिश्रोताओ तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुन दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 MHz पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्ट श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

ए तो हाँ सारे अंधा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला के निश्चित तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे ये बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

कानवे दशमलव 2 MHz पर ये तोहा सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कन्या श्रोताओ तोहा सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

ए तो हाँ सारे अंदा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही। तुहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

0: गई भैंस पानी में भैया
1: से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: ये कहाँ से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक और

राखी का असली मकसद सिर्फ एक कलाई तक सीमित रहना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: पहुंचे ये प्रगति और विकास।
1: अब समझी जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
2: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
3: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
4: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
5: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
6: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
5: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
6: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
5: है?
6: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: अच्छा मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तुमने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
6: ओह नो,
7: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
7: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
8: काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो कुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का एक खास न्यूज़ बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। PCNPNDT एक्ट, जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित, क्लिनिक व अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नियमित औचक निरीक्षण के निर्देश। 9वीं और 11वीं कक्षा से ही होगा विद्यार्थियों का पंजीकरण। 2 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 1500, बच्चे बताएंगे पानी की शुद्धता, 2662 स्कूलों में जांच शुरू। अब समाचार विस्तार से। अधिनियम 1994 के तहत गठित जिला सलाहकार समिति व जिला उपयुक्त प्राधिकरण की बैठक की। इस मौके पर जिला के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त 16 आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें से 12 मामलों को मौके पर ही अनुमोदन कर दिया गया, जबकि अन्य को औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। डॉक्टर उमेश भारती ने कहा कि खंड चिकित्सा अधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित क्लिनिक व अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से राज्य की सीमा से सटे क्षेत्रों में संचालित केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट CMO कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि PCNPNDT एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी CJP एक बार फिर आंदोलन करने की तैयारी में है। इस बाबत CJP ने 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी शांतिपूर्ण विरोध मार्च का आह्वान किया है। अपनी राष्ट्रीय CJP ने यह फैसला कार्य समिति की बैठक में लिया है। इस बैठक में उसने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। CJP ने कहा कि सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों और आश्वासनों को अब तक जमीन पर लागू नहीं किया है। सरकार के भरोसे पर जंतर मंतर से शुरू हुए देशव्यापी युवा आंदोलन को वापस लिया गया था, लेकिन एक महीने बाद भी केंद्र की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान CJP ने खास तौर पर देश भर में दर्ज FIR को लेकर सरकार के रुख पर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत 2 लाख पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1500 से 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। सोमवार शाम को दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह घोषणा नियम 130 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा के दौरान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के 300 पद भरेगी। इसके अलावा दिसंबर से मार्च तक प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नर्सों के सभी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पूर्व सैनिकों ने अग्निवीर भर्ती को बंद करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया और मुख्यमंत्री से मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाने की मांग की। कुल्लू के पूर्व सैनिक शिवदयाल सिंह ने कहा कि इस अग्निवीर योजना से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी के बाद न तो उन्हें पेंशन की सुविधा है और न ही अन्य सुविधाएं मिलती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर योजना से सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना तथा हमीरपुर जिलों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि वे सेना में नियमित भर्ती के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती कोटे को भी कम किया गया है और इससे भी हिमाचल प्रदेश के युवाओं को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि 4 परमवीर चक्र जीतने वाले हिमाचल प्रदेश तथा देश के वीर जवानों के साथ अग्निवीर योजना अन्याय है। श्री सुक्खू ने कहा कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस में 1300 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की है और आने वाले समय में 1000 पद और भरे जाएंगे। धर्मशाला विद्युत उपमंडल नंबर 2 के सहायक अभियंता लोकेश चैधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुरानी विद्युत लाइनों को बदलने तथा सामान्य रखरखाव के कारण DTR 250 KVA मसपुर, 100 KVA कंद्रेहट 2, 100 KVA WSS कंद्रेहट बंद रहेंगे, जिसके चलते मस्तपुर इच्छी, अपर चैतरू तथा सात लत्ते क्षेत्रों में 27 अगस्त सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर उक्त कार्य अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील भी की है।
एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का आयोजन 17 से 20 अगस्त 2026 तक देहरादून में किया गया। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 14 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा एवं उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। भारत के विभिन्न राज्यों से भी खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के लगभग 11 खिलाड़ियों ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया, जिनमें ऑकलैंड हाउस स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स के 2 विद्यार्थी भी शामिल थे। इनमें ऑकलैंड हाउस स्कूल के कक्षा 10 के छात्र समर्थ अत्री ने जूनियर बी पुरुष वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। समर्थ ने प्रतियोगिता के दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया में कुल 22वां स्थान हासिल किया। समर्थ अत्री को इस प्रतियोगिता में 1500 मीटर दौड़ में 2 मिनट 51 सेकेंड का शानदार समय दर्ज किया। उन्होंने बेहतरीन

62 स्कूलों में विद्यार्थियों को फील्ड टेस्ट किट FTK उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनकी मदद से वे वर्ष में 3 बार स्थानीय पेयजल स्रोतों का परीक्षण कर रहे हैं। पानी की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट जल शक्ति विभाग और संबंधित उपमंडल दंडाधिकारियों के साथ साझा की जा रही है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सके। शिक्षा के साथ सामाजिक सरोकारों को जोड़ने वाली इस पहल को प्रदेश में काफ़ी सराहना मिल रही है। समग्र शिक्षा की इस पहल ने विज्ञान की पढ़ाई को पूरी तरह व्यवहारिक स्वरूप दे दिया है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।

राखी का असली मकसद सिर्फ एक कलाई तक सीमित रहना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन

0: उसका स्वागत करो।
1: पापा जी ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति।
2: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
3: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
1: अब समझी जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
3: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: अच्छा मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तुम मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
8: ओह नो।
9: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
3: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
10: काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को तू।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और सुबह के 9 बज गए हैं श्रोताओं और ये समय रहता है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का। तो आज का ये कार्यक्रम लेकर आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हाजिर हो चुकी है स्टूडियो में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। आपका आज का दिन मंगलमय रहे, अच्छा रहे, इसकी कामना के साथ हम कार्यक्रम में आ पहुँचे हैं। जितने भी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उन सभी का दिल से स्वागत है कार्यक्रम में और सभी को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अब से लेकर 11 बजे तक, यानी कि इसका समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का 2 घंटे का ये सफ़र आज हम बिताएंगे इकट्ठे, यानी कि बातचीत करेंगे आप तक और जानकारियाँ भी पहुँचाएँगे, साथ ही आपका मनोरंजन करवाएँगे प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो श्रोताओं, अपने अपने काम भी कीजिए और अगर आप कहीं निकले हुए हैं अपने काम की और तो आपसे यही कहेंगे, सेफली ड्राइव करें, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। दूसरों का ख्याल रखने वालों का ख्याल ऊपर वाला ज़रूर रखता है। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत रोज़ की तरह हम करेंगे एक अच्छे से विचार के साथ और इस विचार के साथ ज़रूर आप भी थोड़ा सा विचार विमर्श ज़रूर करिएगा। आज का विचार है श्रोताओं, अमूल्य संबंधों की तुलना कभी धन से ना करें। धन 2 दिन काम आएगा जबकि संबंध जो है वो जीवन भर काम आएंगे। तो श्रोताओं, बहुत ही प्यारा विचार है और इस विचार पर विचार ज़रूर करिएगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कार्यक्रम में की संगीत भी हम लेकर आते हैं, तो चलते हैं अब देर ना करते हुए सबसे पहले लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत जिसे हम लेकर आए हैं जुनून फिल्म से श्रोताओं, और आवाज़ें दी हैं अनुराधा पोटवाल और विपिन सचदेवा ने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम की शुरुआत हमने की इस गीत के साथ, वक्त कटे नहीं कटता है। बिल्कुल, हमारा भी वक्त ऐसे नहीं कटता है जब तक हमारे सभी श्रोता हमारे साथ ना जुड़ जाएं। तो श्रोताओं, अगर आप कहीं दूर से हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो बिल्कुल पास आ जाइए, और रेडियो सेट की आवाज़ अगर थोड़ी सी कम है तो उसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब से लेकर 11 बजे तक आप सुनने वाले हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीत, और जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाई जाएंगी। श्रोताओं, रेडियो को सुनने के लिए हमें कोई भी काम अपना रोकना नहीं पड़ता है। जो भी काम हम कर रहे हैं उसे करने के साथ साथ मनोरंजन भी अपना कर सकते हैं, प्यारे प्यारे गीतों को सुन सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, और अगर दिल करे झूमने का तो झूम भी सकते हैं। सच मानिए श्रोताओं, कोई भी काम है अगर खुशी से आप करेंगे तो उस काम को करने में आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा और काम काम नहीं लगेगा। बिल्कुल। और श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, जिसे कि आप 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमीरपुर के ढेटवाल की आवाज़ पर भी सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे, तो हमीरपुर के साथ जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी सुषमा की राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ वहाँ के श्रोता भी हमारे बिल्कुल ठीक होंगे। श्रोता हमारे बहुत दूर दूर से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वो कहीं से भी जुड़े हों, अगर हम उस जगह का नाम नहीं ले पाते हैं तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी, लेकिन जितने भी श्रोता कहीं से भी जुड़े हैं हमारे लिए एक एक श्रोता बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हैं तो हम हैं श्रोताओं। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में हम आपको देते हैं मौसम की जानकारी। तो श्रोताओं, अभी धर्मशाला की बात अगर मैं करूं तो बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है। अब ऐसा लगता है कि बरसात जो है वो हमें टाटा बाय बाय करने ही वाली है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपनी दस्तक वो देती है और फिर चली जाती है। खैर, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और नुकसान भी बहुत हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मौसम ने तो अपने समय पर आना ही है और समय पर चले भी जाना है। ये मौसम है, आ भी गया और जाने भी वाला है श्रोताओं। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते जाते हैं और हम समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। तो श्रोताओं, मौसम की हम बात कर रहे थे, धर्मशाला की बात अगर हम करें तो आज का तापमान जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, और हवा में नमी की बात करें तो 99% हवा में नमी बनी हुई है। अभी भी हम आपसे यही कहेंगे कि इस मौसम पर बिल्कुल भी मत जाइए। धूप ज़रूर खिली है, लेकिन अपने बैग में, अपने पर्स में एक छाता रखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जाते जाते शाम तक ये मौसम कौन सी करवट बदल ले कुछ कहा नहीं जा सकता है। साथ ही श्रोताओं, मौसम की बात हम कर रहे हैं तो ज़रूर थोड़ी सी मौसम के बारे में बात आपसे और भी करेंगे। मॉनसून की सक्रियता के कारण बादल बरस सकते हैं। मंगलवार की बात करें तो शिमला में सुबह धूप खिली रही, लेकिन दोपहर बाद मौसम बदला और कई जगह बादल जमकर बरसे। इसी बीच चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में भारी भूस्खलन से कोडल से उरई सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। साथ ही श्रोताओं, पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा जो है सड़क को तोड़ता हुआ नीचे नाले में जा गिरा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मंगलवार शाम तक प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 99 सड़कें बंद थी। इसमें मंडी जिला में 44, कुल्लू में 23, सिरमौर में 12 और कांगड़ा में 7 सड़कें शामिल हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी मौसम की, और मौसम की जानकारी के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम के, मौसम को और रंगीन बनाएंगे, यानी कि आपको सुनवाएंगे गीत। तो चलिए सुनिए इस प्यारे से गीत को, और आपके साथ हम भी सुन रहे हैं इस प्यारे से गीत को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।

0: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत समय तू धीरे धीरे चल। लेकिन श्रोताओं, समय जो है वो धीरे धीरे चलता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कब हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो निकल चुका होता है। और कार्यक्रम में भी हमारे 2 घंटे का जो सफ़र होता है ये इतना छोटा लगता है, पता भी नहीं चलता कि 2 घंटे का सफ़र कब ख़त्म हो जाता है। खैर, समय के साथ हमें चलना पड़ेगा। और अभी के लिए फ़िलहाल कार्यक्रम में समय हो रहा है समाचारों का, और अब हम सुनेंगे पहले समाचार, बाकी की बातें करेंगे समाचारों के बाद।
1: शिमला है, अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुने। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर भारतीय को समाचार देकर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज 5वीं बैठक, मुख्यमंत्री हिम ऊर्जा का सालाना प्रशासनिक प्रतिवेदन 2025-26 रखेंगे सदन में। आज ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और कुल्लू जिला में किसान फल उत्पादन के साथ बेमौसमी सब्जियों को उगाकर अपनी आर्थिकी को कर रहे मजबूत। अब समाचार विस्तार से। देश और विदेश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ने कल अपनी सफलता के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले की संख्या में लगभग 13,000 केवल 1,77,00,000 लेंगे थे, वहीं वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गया है। इस अवधि के दौरान लेन देन का मूल्य भी 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 314,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI के इस शानदार सफर की सराहना करते हुए इसे देश की डिजिटल यात्रा का एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर देशवासियों से अपने UPI अनुभव साझा करने का आह्वान किया और कहा कि इसकी अभूतपूर्व पहुंच पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। UPI ने न केवल डिजिटल विभाजन को कम किया है बल्कि देश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया है।
2: भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है UPI, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है।
1: प्रदेश में भी UPI डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। प्रदेश के लोगों को UPI के माध्यम से पैसों के लेन देन में काफी सुविधा मिली है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई UPI सुविधा से अब बिना नकदी के भी लेन देन आसान हो गया है और रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने के लिए UPI के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिम ऊर्जा का सालाना प्रशासनिक प्रतिवेदन 2025-26 सदन में रखेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
3: शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें विधायकों द्वारा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, सड़कों और आपदा से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद शून्यकाल में भी विधायक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिम ऊर्जा का सालाना प्रशासनिक प्रतिवेदन 2025-26 सदन में रखेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार में पहले संशोधन नियम 2026 की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे। इसके अलावा आज सदन में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए जाएंगे। विधायक रामकुमार डिजिटल मीटर लगने के बाद जनता को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाएंगे। वहीं विधायक राकेश जम्बाल भूस्खलन के कारण तत्तापानी सलापड़ मार्ग बंद होने से बनी स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। सदन में 2 दिन से चल रही नियम 130 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा का आज सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। वहीं नियम 130 के तहत युवाओं के लिए रोजगार गारंटी के कार्यान्वयन पर चर्चा जारी रहेगी। 24 अगस्त को शुरू हुई इस चर्चा पर आज भी सदन में बहस होगी। चार दिन सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही है। विपक्षी भाजपा ने राष्ट्रगान के अपमान को लेकर सरकार के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि अब कार्यवाही का वीडियो भी सामने आ गया है, कहीं राष्ट्रगान का अपमान नहीं हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री अब माफी मांगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार है। यह दिन पैगंबर इस्लाम हजरत के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि यह अवसर दुनिया भर में एकता और खुशी को बढ़ावा देगा। उन्होंने कामना की कि दया और समाज के प्रति योगदान की भावना हमेशा देशवासियों का मार्गदर्शन करती रहे। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।
4: ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसका पेट भरा हो। ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसको सांस में तकलीफ है। और अब जानती हूँ, अगर खांसी जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण है। ऐसे में घरेलू इलाज तो बिल्कुल नहीं, तुरंत इसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाऊंगी। निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कुल्लू जिला में किसान फल उत्पादन के साथ साथ बेमौसमी सब्जियों की खेती को अपनाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। विशेषकर फूल गोभी और बंद गोभी की बेमौसमी फसल किसानों के लिए अच्छी आय का साधन है। जिले के सैकड़ों किसान नकदी फसलों को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं। अधिक दौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
6: कुल्लू जिला में किसान फल उत्पादन के साथ साथ बेमौसमी सब्जियों की खेती को अपनाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विशेषकर फूल गोभी और बंद गोभी की बेमौसमी फसल किसानों के लिए अच्छी आय का जरिया बन रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को गोभी के बीज की खरीद पर 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था के लिए 55% तक का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार द्वारा भी किसानों को उन्नत किस्म के बीज, खाद तथा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने के साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी अनुदान प्रदान किया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इधर राजधानी शिमला में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई और इसका केंद्र शिमला से 66 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर की गहराई रहा। वहीं चंबा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से फिलहाल किसी नुकसान का कोई समाचार नहीं है। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत शिमला व माई भारत NSS के संयुक्त तत्वावधान में राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा शिमला और राजकीय महाविद्यालय संजोली में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी व देश के गौरव मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का कार्यक्रम कल 27 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया संवाद का मुख्य उद्देश्य युवाओं, खिलाड़ियों और देश के भविष्य को एक मंच पर लाकर खेलों के विकास, युवा सहभागिता व राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर संवाद स्थापित करना है। चंबा जिले में आधिकारिक तौर पर 4 सितंबर यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू होने वाली पवित्र मणिमहेश यात्रा के दृष्टिगत आज से हेलीटैक्सी सेवा शुरू हो रही है। ये सेवा श्रद्धालुओं को 20 सितंबर तक मिल पाएगी। हमारे जिला संवाददाता के अनुसार भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी सुविधा मिलने के साथ इस बार होली से गौरीकुंड तक भी यात्रियों को ये हेली टैक्सी सुविधा मिल पाएगी। इसके लिए 4 हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं देंगे। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, रोजगार गारंटी पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट, मुख्यमंत्री ने कहा आउटसोर्स पर कम होंगी भर्तियां, बनेगी नीति, कौशल विकास भत्ते में भी घोटाला। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा ऐलान, व्हाइट पेपर कमेटी खोलेगी पूर्व भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की पोल। दैनिक जागरण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं, दिव्य हिमाचल लिखता है नई नौकरियों पर तना फिर वॉकआउट। पंजाब केसरी की एक खबर है, बिलासपुर के लदरौर में भूस्खलन, मलबे में दबने से मौत, भरमौर में है पहाड़ दरका। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई पेमेंट के 10 वर्ष पूरा होने पर की शानदार सफल को बताया महत्वपूर्ण, कहा इसकी अभूतपूर्व पहुंच पर हर भारतीय को होना चाहिए गर्व। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज 5वीं बैठक, मुख्यमंत्री हिमोचा का सालाना प्रशासनिक प्रतिवेदन 2025-26 रखेंगे सदन में। आज ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और कुल्लू जिला में किसान फल उत्पादन के साथ बेमौसमी सब्जियों को उगाकर अपनी आर्थिकी को कर रहे मजबूत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे श्रोताओं, आज आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो समाचारों के बाद अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम आपके साथ करेंगे बातचीत, और क्या वो बातचीत रहेगी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी समय के बाद, क्योंकि अब आपको करवाना है हमें आपका मनोरंजन। और आपके मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे गीतों में से एक गीत जो है वो चुनकर अब आप तक पहुंचा रहे हैं श्रोताओं। पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और बाकी की बातें करेंगे इस गीत के बाद। बंधन फिल्म का ये गीत है श्रोताओं, और कुमार शानू की आवाज़ है।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत। श्रोताओं, राखी का त्यौहार आने ही वाला है, बस कुछ ही दिनों का, यानी कि परसों राखी है। और हम रोज़ाना अपने कार्यक्रम में थोड़ी थोड़ी बात राखी को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्व का इंतज़ार हर बहन को रहता है हर साल। श्रोताओं, राखी यानी कि रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसके लिए बहनें इंतज़ार करती हैं कब वो अपने भाइयों से मिलेंगी और उनकी कलाई पर वो उस प्यार के धागे को बांधेंगी। लेकिन श्रोताओं, रक्षाबंधन जो है वो अब आने वाला है, आप सभी को पता है, क्योंकि आजकल बाज़ारों में जब भी आप कहीं जाते हैं तो बहुत सारी बहनें आपको मिल जाएंगी राखियां देखते हुए, खरीदते हुए, और बाज़ारों में दुकानें भी सजी हैं राखियों के साथ। लेकिन आजकल अगर सोशल मीडिया की बात की जाए श्रोताओं, कुछ भी, कोई भी त्यौहार आने वाला हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो, उस पर फटाफट से मीम्स बन जाती हैं, रील्स बन जाती हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रक्षाबंधन पर भी रील्स लोग बना रहे हैं, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बहनों के आने पर कई बार भाभियों के जो चेहरे हैं वो उदास हो जाते हैं या उन्हें बुरा लगता है। लेकिन ऐसे रील्स बनाने का मतलब मुझे समझ नहीं आता कि क्यों बनाते हैं। हर कहीं ऐसा नहीं होता है। और कहते हैं प्यार दो तो प्यार आपको मिलेगा, इज्जत दोगे तो इज्जत आपको मिलेगी। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रोताओं ऐसा है जहां चाहे वो किसी घर की बहू हो, चाहे वो बेटी हो, हर किसी को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का मन होता है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें कब किसे अपने भाई को जाकर कब राखी बंधवानी है, बांधनी है, या हमारे घर आने वाली जो बेटियां हैं, हमारे जो नंदे हैं, उनका हमें स्वागत कैसे करना है, उन्हें हमें समय कैसे देना है। लेकिन रिश्तों को ख़राब करने के लिए अगर हम ऐसी रील्स बनाएंगे, ऐसी बातों को सामने लेकर आएंगे, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, दूसरों के रिश्ते और ख़राब होंगे। रिश्तों को ख़राब करने की बजाय रिश्तों को सुधारा कैसे जा सकता है, उस पर हमें सोच विचार करनी चाहिए। श्रोताओं, हम भाइयों से यही कहेंगे जो भाई आजकल इसी उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि भाई रक्षाबंधन आने वाला है तो हमें हमारी जेब जो है वो थोड़ी सी भारी करनी पड़ेगी। खैर, वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि साल में एक बार अगर बहनें अपनी आपकी जेब हल्की कर भी देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनका भी हक बनता है। और रही बात बहनों की, तो एक बहन होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ कि हर बहन ये सोचती है कि भाइयों को वो राखी बोझ ना लगे, उन्हें ये ना लगे कि हम कुछ लेने के लिए ही आते हैं या हमारे अंदर लेने की भावना रहती है। अगर आप अपनी बहनों को प्यार देते हैं, प्यार से मुस्कुरा कर उनसे बात भी कर लेते हैं, तो आप ये समझिए कि आपने उन्हें वो दौलत दी है जिसकी कोई कीमत नहीं है। खैर, रक्षाबंधन आने वाला है श्रोताओं, और रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही हम अपने वीर सैनिकों को भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देंगे जो बहुत दूर दूर बॉर्डर्स पर खड़े रहते हैं, जिनकी बहनें उनसे दूर होती हैं, उन्हें भी हमारे और से दिल से शुभकामना है। और हम उनसे भी ये कहेंगे कि हम सब उनकी बहनें हैं, उन्हें हमारा प्यार यूं ही मिलता रहेगा। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गीत लेते हैं एक और प्यारा सा। तो चलिए, हम जोली फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, लीजिए सुनिए और इन्जॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को।

जी श्रोताओं, तो इस गीत को सुन के आपके मन में भी हुई टिक टिक टिक या नहीं हुई? अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे गाने अभी बाकी हैं श्रोताओं कार्यक्रम में, और ज़रूर आपके दिल में आवाज़ ज़रूर आएगी और आप ही इन गीतों को गुनगुनाएंगे। लेकिन श्रोताओं, कहते हैं कि गीत संगीत को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करना चाहिए हमें, चाहे हम थोड़ा सा ही समय दें, लेकिन रेडियो के साथ जुड़ना चाहिए और ये गीत संगीत सुनना चाहिए, क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे दिल के तार भी छेड़ देते हैं। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला भी आप सुन रहे हैं श्रोताओं, और आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो श्रोताओं, आज है 26 अगस्त का दिन, देखिए समय कैसे निकलता जाता है, और अगस्त का ये मंथ भी अब हमें अलविदा कहने पर आ गया है। तो श्रोताओं, समय जिस तरह से बीत रहा है, उस तरह से हमें भी खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ अपनी जीवन में आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो 26 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, तो हर दिन एक नया इतिहास ज़रूर अपने साथ रखता है। तो चलते हैं, जानते हैं आज के दिन का इतिहास। श्रोताओं, 26 अगस्त

में ब्रिटिश बेड़े पर हमला कर बड़ी मात्रा में हथियार और गोलियां लूटी थी। साथ ही श्रोताओं, आज के दिन की अगर हम बात करें तो अमेरिका के संविधान का 19वां संशोधन प्रभावी हुआ, जिससे महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था 1920 में। 1982 में श्रोताओं, आज के दिन नासा ने टेलीसेट एफ से जुड़ा एक प्रक्षेपण का सफल प्रक्षेपण किया था, जिसका नाम था इंस्टेट 1A। और श्रोताओं, कुछ एक प्रसिद्ध हस्तियों के जन्म भी आज के दिन हुए हैं। जैसा कि आपको हमने बताया, 1910 में आज ही के दिन मानवता की सेवा करने वाली और नोबेल शांति पुरस्कार तथा भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। साथ ही 1956 की बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय राजनेत्री और पशु अधिकारवादी मेनका गांधी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। साथ ही बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर का जन्म भी आज ही के दिन 1968 में हुआ था। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी इतिहास की, और इतिहास से अब हम निकल कर चलेंगे, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत, धर्म करम। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे मुकेश की आवाज़ में। अल्ट्रा चैनल्स

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम में। अभी आपने सुना ये गीत। श्रोताओं, कहीं ना कहीं हमारे जाने के बाद हमारे जो बोल हैं वही हमारी याद बनकर रह जाते हैं, इसलिए हमारी बोलबानी अच्छी होनी चाहिए और प्यार से हमें बात करनी चाहिए। श्रोताओं, हमारे शब्द ही हैं जो रिश्तों को बना भी लेते हैं और बिगाड़ भी देते हैं, इसलिए अपने शब्दों पर हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम कार्यक्रम में लौटेंगे और आपसे करेंगे खास बातचीत। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में हम आपके साथ करते हैं बातचीत और आज की बात भी बहुत ख़ास है। आज श्रोताओं एक बहुत ही साधारण सा सवाल है आप लोगों से, लेकिन इस पर हमें ईमानदारी से सोचना भी पड़ेगा। शायद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इससे बदल सकती है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा व्यर्थ क्या होता है, खाना, पानी या समय? श्रोताओं, ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। खाना हमारे शरीर की ज़रूरत है, पानी हमारे शरीर की ज़रूरत है और जीवन की भी ज़रूरत है, और समय हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हम इन तीनों की कीमत समझते हैं श्रोताओं? सबसे पहले बात करेंगे श्रोताओं कार्यक्रम में खाने की। कभी शादी ब्याह में, कभी पार्टी में, कभी घर पर ही हम ज़रूर से ज़्यादा खाना बना लेते हैं या प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना ले लेते हैं, और जब थोड़ा सा खाना बच जाता है तब हम सोचते हैं कि इतने से खाने का क्या ही जाएगा, और हम उस थोड़े से खाने को डस्टबिन में डाल देते हैं और देखते ही देखते वो डस्टबिन इतने सारे खाने के साथ भर जाता है। श्रोताओं, थोड़ा सा सोचिए, उस खाने को खेत में उगाने के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पानी लगाना पड़ता है, उसे धूप भी चाहिए होती है, अनाज बाज़ार तक पहुंचता है और किसी ने उसे ख़रीदा, घर पर लाकर बनाया और आखिर में हमने उसे फेंक दिया। बहुत बार देखा जाता है श्रोताओं, हम अपने बच्चों को भी कई बार कोशिश करते हैं कि बच्चा खा ले, उसके लिए उसकी प्लेट में उतना डाल देते हैं कि ये खा सकेगा, लेकिन बच्चा नहीं खा पाता है और वो भोजन हमारा व्यर्थ चला जाता है। सोचिए श्रोताओं, उन लोगों के बारे में जिन्हें अनाज के एक एक दाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और तरसना पड़ता है। इसलिए खाना सिर्फ खाना नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत और संसाधन जुड़े हुए हैं। तो ज़रूर आज आपसे भी एक सवाल रहेगा कि आपके घर में कौन सी चीज़ ज़्यादा व्यर्थ होती है, खाना, पानी या समय? अगर ऐसा होता है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा और कार्यक्रम में बताइएगा। फ़िलहाल के लिए कार्यक्रम में लेते हैं हम कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत। तो लीजिए सुनिए उपकार फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये गीत, और इस गीत को श्रोताओं अनाज की कदर से जोड़कर देखें तो इसका संदेश बहुत सुंदर है। मेरे देश की धरती हमें याद दिलाता है कि खेतों में पैदा होने वाला अनाज केवल भोजन नहीं बल्कि किसान की मेहनत और धरती का अनमोल उपहार है। एक एक दाना किसान की मेहनत, पानी, मिट्टी और प्रकृति के सहयोग से हमारे घर तक पहुंचता है। इसलिए हमें अनाज को व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए और भोजन की कद्र करनी चाहिए। जिस धरती को गीत में सोना और हीरे मोती उगाने वाली कहा गया है, उसी धरती के अनाज का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल श्रोताओं, और महंगाई के इस दौर पर हम ये कहेंगे कि हर चीज़ को हमें बहुत ही सोच विचार के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं, आगे हम पानी की बात भी करेंगे, समय की बात भी करेंगे श्रोताओं, लेकिन इन सभी चीज़ों की अपना एक मूल्य है, और इन चीज़ों को अगर हम आज से ही ध्यान से इस्तेमाल करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को ये चीज़ें मिल पाएंगी। महंगाई की बात हम कर रहे हैं श्रोताओं, और आजकल देखिए महंगाई इतनी हो गई है कि एक आम इंसान अगर एक राशन भी लेने जाता है तो उसे बहुत कुछ सोचना पड़ता है, कौन सी चीज़ ले कौन सी ना ले, ये सारा विचार विमर्श करना पड़ता है। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है अपनी जेब को देखते हुए। और आजकल आप सभी जानते हैं कि चीनी पर कितनी चर्चा हो रही है, चीनी जो कि एक आम इंसान अपने घर पर ले सकता है, और चीनी के बिना कोई भी काम नहीं हो पाता। घर में अगर दो गेस्ट भी आ जाएंगे तो चाय बनेगी ही बनेगी, और आज वो चीनी कितनी महंगी हो गई है आप सभी जानते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस पर बात भी की है। तो श्रोताओं, महंगाई को देखते हुए हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमें अपने अनाज को, अपने पानी को और अपने समय को बचाना है। तो श्रोताओं, आज हम बात यही कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे घर पर क्या बर्बाद होता है। आप भी सोचिए, आप भी देखिए कि हमारे घर में किस चीज़ की वेस्टेज ज़्यादा होती है, खाने की होती है, पानी की होती है या समय की होती है। और इस पर अगर आप हमसे बात करना चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ का नंबर रहेगा 7018117091। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। तो लीजिए, आजकल के समय को दर्शाता हुआ ये गीत है, लीजिए सुनिए रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी।

बिल्कुल श्रोताओं, महंगाई मार गई गीत में शक्कर का उदाहरण बहुत ही साधारण चीज़ के जरिए महंगाई की बड़ी तस्वीर दिखाता है। श्रोताओं, ये गीत 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का है और इसमें उस समय की बढ़ती कीमतों पर व्यंग किया गया था। गीत में शक्कर को लेकर ये भाव है कि पहले थोड़े पैसों में घर के लिए पर्याप्त शक्कर आ जाती थी, जब कई महंगाई बढ़ने पर वहीं पैसे कम मात्रा की शक्कर के लिए पर्याप्त रह जाते हैं। ये बात आज भी इसलिए प्रासंगिक लगती है क्योंकि महंगाई का असर केवल किसी एक वस्तु पर नहीं बल्कि परिवार के पूरे घरेलू बजट पर पड़ता है। श्रोताओं, आज के समय में इस गीत को देखें तो शक्कर सिर्फ एक उदाहरण है। रसोई का कोई भी सामान हो, दूध ले लीजिए, सब्जियां, शिक्षा और घर के दूसरे खर्च बढ़ने पर परिवार को अपनी ज़रूरतों और खर्चों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। इसलिए लगभग 5 दशक पुराना ये व्यंग्य आज भी आम आदमी की चिंता को समझने का एक सरल माध्यम बन जाता है। तो बिल्कुल ये गीत जो है आज भी हम पर बिल्कुल ठीक बैठता है। आज भी वही हाल है, महंगाई जो है आज भी हमें मार रही है। 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बातों के साथ साथ हम आप तक पहुंचाते हैं जानकारियां भी। तो चलते हैं जानकारी की ओर। श्रोताओं, धर्मशाला विद्युत उपमंडल नंबर 2 के तहत पुरानी विद्युत लाइनों को बदलने तथा सामान्य रखरखाव का कार्य किया जाएगा। इसमें DTR 250 KV, मस्तपुर 100 KV, कंद्रेहड़ 100 KV, WSS कंद्रेहड़ बंद रहेंगे, जिसके चलते मस्तपुर, इच्छी, अपर चैतड़ू और साथ लगते क्षेत्रों में 27 अगस्त यानी कि कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इस अवसर पर सहायक अभियंता लोकेश चौधरी ने बताया कि मौसम खराब होने पर इस कार्य को अगले दिन भी किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। तो श्रोताओं, बातों के साथ और जानकारी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। गोलमाल फिल्म का ये गीत है श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं श्रोताओं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम का समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बर्बादी की, यानी कि हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बर्बादी हो जाती है, खाने की बर्बादी, पानी की बर्बादी और समय की बर्बादी। तो श्रोताओं, खाने पर हमने बात की कि खाना हम लोग कैसे व्यर्थ गवा देते हैं कई बार और बर्बाद कर देते हैं। और अब पानी की बात हम करेंगे। नल खुला रह गया, ब्रश करते समय पानी बहता रहता है, सब्जियां धोते समय ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो गया, ये सब बातें जो है हर घर में सुनने में मिल जाती हैं और हो भी जाती हैं। श्रोताओं, पानी हमें बहुत आसानी से मिल रहा है, इसलिए शायद उसकी कीमत हम भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन अगर नल में पानी ना आए तो समझ आता है कि पानी की हर एक बूंद कितनी कीमती है। श्रोताओं, हर उस चीज़ की, ये तो हम पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन हर उस चीज़ की कीमत तभी समझ में आती है जब वो हमारे पास बहुत कम रह जाता है या ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है। जब तो हमारे पास वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तब तक हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ कम होती जाती है तो हमें लगता है कि सच में इसकी कीमत कितनी ज़्यादा है। पानी की भी यही बात है श्रोताओं, घर में अगर हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है तो हम पानी व्यर्थ में ही गंवा देते हैं। लेकिन श्रोताओं, आज हमें सोचना पड़ेगा कि पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है, पानी को हमें वेस्ट नहीं करना है, बचाना है। और अगर हम इस बात को जल्दी समझ जाएं तो आने वाला समय हमारा अच्छे से निकलेगा, नहीं तो हमें कहीं ऐसा ना हो कि पानी के लिए भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। और जब कीमत की बात आती है ना और अपनी जेब से पैसे जाते हैं तब हम उस चीज़ की कदर करते हैं क्योंकि वहाँ हमारे पैसे लगते हैं। अभी हमारे इतने पैसे नहीं लगते इसलिए हम उस चीज़ की इतनी कदर भी नहीं करते। तो श्रोताओं, पानी को भी बचाना है, पानी की भी हमें संभाल करनी है। और पानी की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो पुरानी बॉडियाँ बनी हुई हैं जो आज भी लोगों ने बड़ी ही संभाल कर रखी हैं, उन्हें संभाल कर रखना है, उनका रख रखाव करना है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो स्रोत हैं जो जब हमारे नल नहीं हुआ करते थे इनका इस्तेमाल हमारे पूर्वज किया करते थे। आज भी हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में कब इनकी ज़रूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो श्रोताओं, सोचिए, विचार कीजिए और आप विचार भी कीजिए, साथ ही कार्यक्रम के अगले गीत को भी एंजॉय कीजिए। जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, इस फिल्म का गीत अब आपके रेडियो सेट पर। लीजिए, एंजॉय कीजिए इस प्यारे से ट्रैक को।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब समय है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से लौटेंगे और आपके साथ करेंगे बातचीत। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप भी सुन रहे हैं श्रोताओं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। जैसे कि श्रोताओं, हम आज बात कर रहे हैं कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा बर्बादी किस चीज़ की होती है, खाने की, पानी की या समय की। तो ऐसे में हम सभी को पता है हमारे घर में क्या होता है। किसी के घर में ऐसा भी होगा श्रोता, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और बर्बाद नहीं होने दिया जाता है। लेकिन कहीं कई परिवारों में ऐसा होता है, कुछ लोगों की आदत होती है वेस्ट हो जाने की, चीज़ को वेस्ट कर देने की। तो ऐसे में श्रोता, कई घर में कोई ऐसा सदस्य ज़रूर होना चाहिए जो थोड़ा बहुत रोक टोक करता रहे। जब हमें किसी काम से बार बार रोका जाता है तो कहीं ना कहीं वो हैबिट हमारे अंदर आ जाती है। जैसे कि अपनी ही बात अगर मैं करूं, तो अगर हमारे घर में कोई किसी कमरे में नहीं है और बिजली ऑन है या फ़ैन ऑन करके चला जाता है, तो उसके बाद फिर मैं जो है वो बोलना शुरू कर देती हूं कि भाई जाने से पहले अपने रूम की लाइट और फ़ैन जो है वो ऑफ़ करके जाइए। क्योंकि जब ऐसा बार बार होता है तो उन्हें पता चल जाता है कि अगर हमने नहीं किया तो हमें फिर से सुनने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गलती से ही स्विच बोर्ड की तरफ हाथ चला जाता है और ये एक हैबिट जो है वो बननी शुरू हो जाती है। तो श्रोताओं, घर में कोई एक सदस्य ज़रूर होना चाहिए जो इन चीज़ों को देखे, और अगर कहीं कोई ऐसा करता भी है तो उसे बार बार टोका जाए, रोका जाए, उससे हमारी हैबिट चेंज हो जाएगी और ये सब चीज़ें जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं इनको हम बचा पाएंगे। श्रोता, कार्यक्रम में पानी की हम बात कर रहे थे कि पानी कितना अनमोल है हमारे लिए, पानी की बचत करना बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए, शोर फिल्म का ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अभी आप सुन रहे हैं और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। इस गीत के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आपके साथ बात करेंगे। श्रोताओं, की रक्षाबंधन के बाद हमें इंतज़ार रहता है कृष्ण जन्माष्टमी का, और कृष्ण जन्माष्टमी का सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, कृष्ण भक्तों को ख़ास करके, क्योंकि उन्होंने जो है वो व्रत भी रखना होता है, पूजा अर्चना भी करनी होती है, बहुत सारी तैयारियां जो है वो की जाती हैं। तो श्रोताओं, बात करें कृष्ण जन्माष्टमी की, तो इस बार ये जो पर्व है कृष्ण जन्माष्टमी का, वो 4 सितंबर यानी कि शुक्रवार को मनाया जाएगा। 4 सितंबर की रात 11:57 पर से लेकर 12:43 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। व्रत रखने वाले श्रद्धालु जो हैं वो 5 सितंबर की सुबह 6:01 पर पारण कर सकेंगे। पंचांग के अनुसार श्रोताओं, अष्टमी तिथि 4 सितंबर को रात 2:25 से शुरू होगी और 5 सितंबर को रात 12:13 पर समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 4 सितंबर को रात के 12:29 से शुरू होकर रात 1:04 तक रहेगा। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए मध्य रात्रि का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो श्रोताओं, ये थी जन्माष्टमी पर आपके साथ थोड़ी सी बातचीत, और जो भी लोग जन्माष्टमी का व्रत करने वाले हैं, जन्माष्टमी कब आ रही है ये सोच रहे हैं, तो उन्हें हम बता दें कि 4 सितंबर शुक्रवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं एक और गीत की ओर। श्रोताओं, ये गीत बहुत कुछ हमें सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है, और क्या कहता है ये गीत है, उसके लिए हमें सुनना पड़ेगा इसे। तो लीजिए, इम्तिहान फिल्म का ये गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर पानी व्यर्थ चला जाए तो अगली बार नल बंद रख सकते हैं, लेकिन अगर आज का एक घंटा व्यर्थ चला गया तो क्या हम उसे कल वापस ला सकते हैं? नहीं। यही समय की सबसे बड़ी कीमत है श्रोताओं। हम अक्सर कहते हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, कल कर लेंगे, अभी 5 मिनट मोबाइल देख लेते हैं, अभी आराम कर लेते हैं, बाद में काम कर लेंगे, और देखते ही देखते 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं, आधा घंटा कई घंटों में, और फिर शाम को लगता है कि आज पूरा दिन पता नहीं कहाँ चला गया। असल में श्रोताओं, दिन कहीं नहीं गया होता। हमने अपना समय छोटी छोटी ऐसी चीज़ों में खर्च कर दिया होता है जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी। मोबाइल देखना बुरा नहीं है, आराम करना भी बुरा नहीं है, लेकिन जब मनोरंजन हमारे ज़रूरी काम, पढ़ाई, परिवार, स्वास्थ्य और अपने सपनों से ज़्यादा समय लेने लगे, तब हमें रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, समय ही हमारी ज़िंदगी है। हमारे जीवन के साल, महीने, दिन, घंटे और मिनट, यही मिलकर हमारी पूरी ज़िंदगी बनाते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि मैंने आज 2 घंटे बर्बाद कर दिए, तो असल में हमने अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे वापस ना मिलने वाली चीज़ पर खर्च कर दिए। इसलिए श्रोताओं, थोड़ा सा सोचिए और समय की कद्र करना सीखिए। तो श्रोताओं, समय की कदर कीजिए, और समय भी हमें इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम में अब समय जो है वो भी ख़त्म होने वाला है। तो चलिए जल्दी से सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत। तड़ी पार फिल्म का ये गीत है श्रोताओं, और विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना गीत श्रोताओं, और अब समय हमारे पास भी कम है कार्यक्रम का, तो श्रोताओं चलते चलते अब आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का आखिरी गीत सफ़र फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ में। लीजिए सुनिए इस गीत को और इन्जॉय कीजिए।

0: मैं जब यहाँ आता हूँ आगे।
1: श्रोता, इस गीत के साथ अब हमें भी चलना होगा, यानी कि हमें भी अब लेनी है आपसे इजाज़त। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ रही आपकी रेडियो दोस्त सुषमा, और आज के कार्यक्रम का समय अब यहीं पर समाप्त होता है। अब मुझे यानी कि अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त।

0: पानी में भैया
1: गई से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: अरे कहाँ से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में फंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक और

राखी का असली मकसद सिर्फ एक कलाई तक सीमित रहना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जाबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: मैं 3-2-1 करूंगा, तो मैंने गंदी सी ऐसे करके शक्ल बनाई है।
9: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है?

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: पानी में भैया
1: भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: ये कहां से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में फंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में फंस नहीं स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक

राखी का असली मकसद सिर्फ एक कलाई तक सीमित रहना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी

महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जाबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
8: Oh, no.
9: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी।
8: रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है?

0: नमस्कार दोस्तों, 91.9 kHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका। हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपना मनपसंद कार्यक्रम मन संवाद की एक और खास कड़ी लेकर। जी दोस्तों, हर हफ्ते आप सभी सुनते हैं इस बहुत ही खास कार्यक्रम को, बहुत ही खास जानकारियों से भरा हुआ, हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें, हमारे मानसिक स्वास्थ्य से खासकर जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो इस कार्यक्रम में ये कैसे भूल सकते हैं आप सभी की रुचिका के साथ तो आप सभी जुड़ते हैं, लेकिन जो खास जानकारियां आप सभी तक पहुंचाते हैं, जो एक बहुत ज्यादा मेहनत जिनकी रहती है, प्रियाशी जी, तो आइए उनका भी स्वागत करते हैं कार्यक्रम में, क्योंकि वही इतनी मेहनत से आप सभी तक ये ढेर सारी जानकारियां पहुंचाते हैं। तो मैम, स्वागत है आपका हमारी इस खास बातचीत में।
1: थैंक यू सो मच रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं आप, और उम्मीद करते हैं हमारे दोस्त भी अच्छी होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो मैम, जैसे कि हर हफ्ते हम अपने दोस्तों के लिए कुछ खास जानकारियों के साथ जुड़ते हैं, तो इस बार भी कुछ एक खास बातचीत जो है वो अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि अक्सर जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि हम नजरअंदाज कर देते हैं या भूल जाते हैं। तो वही हम बात करें, जैसे हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन साथ ही कई बार हमारी जिंदगी में हावी हो जाते हैं हमारी भावनाएं
1: जी।
0: तो इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हमारे दोस्तों को ये बताइए कि इमोशनल हेल्थ को हम किस तरह से समझ सकते हैं और मेंटल हेल्थ को हम किस तरह से समझ सकते हैं।
1: देखिए, आम तौर पे जो एक लेमन टर्म पे हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में लोगों की जो धारणाएं हैं मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को लेकर, वो कुछ ऐसी होती है कि लोगों को लगता है इमोशनल हेल्थ इज अबाउट द फीलिंग्स, द इमोशंस, हम जो महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ इज मोर अबाउट द थॉट्स, इट्स मोर अबाउट द कॉग्निशन, कि हम जो भी बिहेवियर कर रहे हैं वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि मेंटल हेल्थ अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टर्म है। मेंटल हेल्थ अपने आप में बहुत सारी चीजों को कंप्राइज करता है, जैसे कि हमारे थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी, हमारे मूड, हमारा एटीट्यूड, हमारा जो एक डिसीजन मेकिंग है, हमारा जो सेंस ऑफ जजमेंट है, जो एनालिटिकल थिंकिंग है, ये सारे ही पहलुओं को मिलाकर मेंटल हेल्थ बनता है। बट सिर्फ इसका एक छोटा सा भाग है। तो बेसिकली इमोशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ के अंडर ही आती है।
0: तो मैम, ये जो हमारी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ है, तो इमोशनल हेल्थ क्या हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है?
1: बिल्कुल।
0: किस तरह से?
1: इमोशनल हेल्थ ऐसे समझिए रुचिका कि हमारे इमोशंस जो है ना, साइंटिफिकली बताते हैं, हमारे इमोशंस जो हैं वो हार्मोन्स डिराइव करते हैं। हमारे हार्मोन्स क्या हैं? हम वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। तो हमारे इमोशंस या भावनाएं, जो भी उनमें जो भी कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ रहा है। और हार्मोनल चेंजेस क्यों हो रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड को कोई तो मैसेज मिल रहा है, कोई तो कमांड मिल रही है ब्रेन से, जिसकी वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स या तो वो पर्टिकुलर हार्मोन को का जो सिक्रीशन है उसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो ये जो भी इम्बैलेंस हो रहा है हार्मोनली, जो हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसका सीधा कनेक्ट है ब्रेन की कमांड से। और ब्रेन को वो कमांड कहाँ से मिल रही है? माइंड से। क्योंकि माइंड हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आए हुए सारे इनपुट्स को प्रोसेस करता है, उसको मीनिंग देता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं ना, देर इज रॉ डेटा देन देर इज एन इंफॉर्मेशन। तो डेटा में जब मीनिंग एड किया जाता है तब वो इंफॉर्मेशन बनती है
0: जी।
1: ये काम कौन कर रहा है हमारे अंदर? हमारा माइंड। तो इस तरीके से मेंटल हेल्थ और हमारा एक जो सोशल एस्पेक्ट है ह्यूमन बींग्स का, कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन रह रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा है, ये सब इम्पैक्ट डालते हैं हमारे मेंटल हेल्थ पर। और मेंटल हेल्थ से इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे हार्मोन्स, यानी कि इमोशनल हेल्थ।
0: तो मैम, अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें, तो ज्यादातर जो अगर हम कहें कि जिंदगी पे हावी होने वाली चीजें हैं तो वो हम किसे मान सकते हैं, मतलब क्योंकि अक्सर हम जब भी सुबह से लेकर शाम तक अगर हम बात करें तो जो मेंटल हेल्थ है उस पे तो हम, खैर वो एक मतलब कि पूरा प्रोसेस है, लेकिन इमोशंस हर बात से जुड़े होते हैं, छोटी छोटी सी बात से, चाहे हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी के प्रति सहानुभूति दिखा रहे
1: जी
0: हैं, या फिर कोई डर, मतलब बहुत सारे इमोशंस जो है हमारे सुबह से लेकर शाम तक हमारी जिंदगी में रूटीन में चलते हैं, तो यहाँ ज्यादा इम्पैक्ट किस तरह से रहेगा?
1: देखिए, इमोशंस तो हमारे इंसान होने का एक प्रूफ है.
0: प्रूफ है जी
1: लेकिन अफसोस की बात यह है कि सोशल कंडीशनिंग की वजह से हमने इमोशंस को कमजोरी का नाम दे दिया. जो भी व्यक्ति इमोशंस को एक्सप्रेस करता है हम उसको कमजोर बोल देते हैं.
0: बिल्कुल
1: और देखिए, ये हुआ भी क्यों होगा? ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी कि अगर सामने वाला व्यक्ति भावुक हो रहा है तो हम उसके इमोशंस का कैसे ध्यान रख सकते हैं या हम
0: जी
1: उसको क्या ऑफर कर सकते हैं.
0: बिल्कुल
1: कि कोई भी चीज जो इंसान को अनकंफर्टेबल महसूस कराती है वो इंसान या तो उस चीज को समझने का प्रयास करता है या फिर वो उस चीज को अवॉइड करने का प्रयास करता है. जिन लोगों ने समझने का प्रयास किया वो लोग एम्पेथेटिक है ना, वो ध्यान रखते हैं, उनसे लोग जुड़ते हैं, उनसे लोगों को बात करने का मन करता है, अपनी परेशानियां उनके पास लेकर जाते
0: लेकर
1: हैं.
0: जाते
1: लेकिन जिन लोगों ने अवॉइड करने वाला रास्ता चुन लिया वो ही लोग दूसरे व्यक्ति जब भावुक होते हैं उनको कमजोर का टैग दे देते हैं. तो ये सबसे बड़ा एक आयरनी है जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, जबकि ये सच नहीं. यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इमोशंस तो हर प्रकार के इमोशंस हमारे अंदर है ना,
0: जी,
1: चाहे वो गुस्सा हो, चाहे
0: चाहे
1: वो
0: डर हो,
1: डर हो, चाहे वो जेलसी हो. और ये इमोशंस जो है ना हर व्यक्ति महसूस करता है.
0: बिल्कुल
1: कोई व्यक्ति अगर अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा वो एक सेकेंडरी बात. इमोशंस और इमोशनल एक्सप्रेशन ये दोनों भी बहुत अलग अलग होते हैं. लोगों को लगता है ये एक है. इमोशंस तो हर कोई महसूस करता है लेकिन एक्सप्रेस
0: एक्सप्रेस
1: सब
0: कैसे
1: अलग अलग
0: करनी है
1: प्रकार से करते हैं, या कुछ लोग नहीं करते तो वो सप्रेस करके रखते हैं.
0: जी
1: तो कुछ ऐसा है हमारे डेली लाइफ में, जो आप पूछ रहे ना कैसा कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, वो ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है सोशल कंडीशनिंग की वजह
0: जी
1: से.
0: बिल्कुल सही मैम ने बहुत ही सही बात कही है दोस्तों, क्योंकि इमोशंस जो है हमारी एक नेचुरल सी चीजें है ना, तो ये हमारे मतलब लाइफ का पार्ट है, एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं जो सोसाइटी की बात है कि लड़के हैं तो वो रो नहीं सकते, उन्हें वो अपना इमोशन जो है वो दबाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी कमजोरी में इन्वॉल्व हो जाता है। अब लड़कियों की बात करें तो लड़कियों भी को भी कहीं ना कहीं उन बातों से जो है वो बताया जाता है कि ज्यादा मतलब सिचुएशंस के हिसाब से देखा जाए तो वो टैग किया जाता है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, लेकिन इमोशंस अगर हम रोएंगे नहीं, कई बार कहते हैं ना रो कर जो है वो कोई टेंशन अगर दिमाग में चल रही है, कोई स्ट्रेस चल रहा है तो वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए ठीक ही
1: डेफिनेटली.
0: है
1: देखिए, इमोशंस क्या है? इमोशंस एनर्जी
0: जी
1: है ना, दिखती नहीं है, खत्म नहीं होती ना, वो जगाई जा सकती है, वो
0: बिल्कुल
1: ट्रांसफॉर्म होती है, वन फॉर्म होती है अनदर. हमें इमोशन कोई भी कब आएगा, महसूस कब होगा? जब कोई व्यक्ति हमारे सामने होगा और उससे हमें किसी प्रकार की ऊर्जा मिलेगी.
0: बिल्कुल
1: वो किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, उसके शब्दों के फॉर्म से मिल सकती है, उसके जेस्चर्स के फॉर्म में मिल सकती है, या उसके एब्सेंस या चुप रहने के फॉर्म में भी मिल सकती है. यानी कि हाउ वी आर रिलेटिंग विद द अदर पर्सन इन टर्म्स ऑफ वॉट दे आर मेकिंग अस फील, वॉट दे आर ऑफरिंग अस. बेस्ड ऑन वॉट दे आर ऑफरिंग अस वी फील सर्टेन थिंग्स. तो वो फीलिंग क्या है? वो है एनर्जी.
0: एनर्जी बिल्कुल
1: तो बेसिकली किसी व्यक्ति के होने से या ना होने की वजह से हम जो भी महसूस कर रहे हैं वो हमारे इमोशंस हो गए. अब वो एनर्जी है, अब हमें हमारे अंदर तो वो एनर्जी आ गई, पर वो एनर्जी अगर हमारे अंदर से बाहर नहीं जाएगी या कहीं दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होगी तो क्या होगा? वो हमारे अंदर ट्रैप्ड रहेगी, जिसके कारण से हमारे अंदर बहुत सारे इम्बैलेंसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे. इसीलिए बोलते हैं कि आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते
0: कहते
1: रहना
0: रहना
1: चाहिए,
0: चाहिए बिल्कुल
1: सप्रेशन नहीं करना चाहिए. सप्रेशन तो सबसे बड़ा पनिशमेंट है जो आप खुद को दे रहे हो विदाउट एनी रीजन.
0: बिल्कुल तो दोस्तों इसके बाद हम और भी इसके बारे में जानेंगे, खास करके आज हम इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जहां इमोशनल हेल्थ की बात है तो इमोशंस तो उससे जुड़े ही हैं, तो किस तरह से वो एक तरह से हावी होते हैं या किस तरह से हमें उसे जो है मतलब कि एक तरह से रेगुलेट करना है, किस तरह से क्या करना है, वही बातें आप सभी जानेंगे। खैर एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत, बहुत ही खास कार्यक्रम के साथ।

0: दोस्तों, इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और प्रियशी जी के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। इस बहुत ही खास बातचीत कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की और आप सभी इस समय एंजॉय कर रहे हैं। तो मैम, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की, तो अक्सर जो आज का समय है तो हम युवाओं की ही बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो राह से भटक रहे हैं वो आज के युवा ही हैं। कहीं ना कहीं सभी की बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ कुछ हद तक जो है वो चीजें हमारे सामने आती। तो कहीं हमारी स्टडी का जो है वो प्रेशर है, तो कहीं हमारे करियर से रिलेटेड बच्चों को प्रेशर है, युवाओं को प्रेशर है, तो वही उसी उन्हीं सब बातों के चलते कहीं ना कहीं फैमिली का भी है। कई बार पेरेंट्स की लड़ाई झगड़े भी बच्चों की जो इमोशंस पे है जो हावी हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये सारी चीजें जो है वो बच्चे सोचते रहते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो सोचना उनका ओवरथिंकिंग में जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो वो किस तरह से हमारे इमोशंस को बिगाड़ता है, जो हमारी ये ओवरथिंकिंग है वो किस तरह से हमारी जिंदगी के जो इमोशंस हैं, जो हमें रेगुलेट कहा जाता है कि रेगुलेट करते रहना चाहिए, तो वो किस तरह से उन्हें बिगाड़ देता है उस प्रोसेस को, और उसे अगर हम सही करना चाहें तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं।
1: देखिए रुचिका, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रश्न को प्रस्तुत किया है
0: जी।
1: पर उससे पहले हम एक बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं
0: जी,
1: कि आज के जो युवा हैं वो ही नहीं है जो भटके हुए हैं
0: जी।
1: अगर वो आज का युवा भटका हुआ है तो वो क्यों है, इसको भी समझ लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वो इसलिए भटके हुए हैं क्योंकि उससे पहले की जो जनरेशन रही है या जो पेरेंट फिगर है आज के टाइम पे
0: जी,
1: वो खुद भटके हुए हैं।
0: बिल्कुल
1: है ना जी। देखिए, अगर पेरेंट्स के अंदर एक सेंस ऑफ अवेयरनेस रहती कि माइंड कैसे फंक्शन करता है और माइंड को लेकर बच्चे को क्या सीख देनी है क्या नहीं देनी है, अगर ये चीजें पेरेंट्स को पता होती तो बच्चा आज का जो युवा है वो ओवर थिंकिंग के ट्रैप में नहीं फंसता।
0: बिल्कुल,
1: कम से कम उनके पास अपने टूल्स और स्किल्स होते कि वो उससे बाहर आ सकते होते। बच्चों के अंदर एक प्रकार का कॉन्फिडेंस होता। अगर आपने एज अ पेरेंट बच्चे को अच्छी स्किल्स दी हैं कि लाइफ में तो चैलेंजेस आएंगे ही, बट उनसे कोप कैसे करना है, क्या मैकेनिज्म्स हैं जो आपको एक्चुअल में हेल्प करेंगे, जो लाइफ स्किल्स एक्चुअल में है, अगर पेरेंट्स ने उसके ऊपर काम किया होता तो फिर बच्चे को ऐसा नहीं होता आज का जो यूथ है बेसिकली। और ये सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर ही नहीं, इनफैक्ट जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर भी ये बात गौर करने वाले। अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग की। ओवरथिंकिंग बेसिकली क्या है कि आपने एक टॉपिक से कुछ सोचना स्टार्ट किया और वहां से आप जंप करते चले गए टू एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कि ये ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है, फिर ऐसा भी हो सकता है, इसके बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और ये तो सिर्फ एक लाइन ऑफ थॉट है, ऐसे ही डिफरेंट पॉसिबल थॉट जो भी होगी उसके लिए भी एक लाइन ऑफ थॉट, एक चेन ऑफ थॉट स्टार्ट होगी, उसी को ओवरथिंकिंग का नाम दिया गया है। कभी कभी इंसान क्या करता है कि एक टॉपिक के बारे में ही बार बार सोचता है, दैट इज व्हेन ओवरथिंकिंग कन्वर्ट्स इनटू वरिंग, कि इंसान एक ही चीज को लेकर अब चिंतित है। तो एक तो हो गया ज्यादा सोचना विच इज ओवरथिंकिंग, और एक हो गया चिंतित यानी कि वरी करना। तो यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में क्या होता है कि उनको कंक्लूजन नहीं मिलता, वरी में कंक्लूजन नहीं मिलता तो वो उसके बारे में सोचते रहते हैं, और ओवर थिंकिंग में इतने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं कि उनके कंक्लूजन कभी खत्म ही नहीं होते। अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग से बचा कैसे जाए या ओवर थिंकिंग से हमारी हेल्थ पर कैसे फर्क पड़ता है,
0: है ना। बिल्कुल,
1: देखिए जब इंसान एन नंबर ऑफ थॉट्स या पॉसिबल थॉट्स के बारे में सोचेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो अपने आप में बहुत डरा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि ये अक्सर ओवर थिंकिंग जो है वो फ्यूचर रिलेटेड होती है। ओवर थिंकिंग का जो नेचर है ना वो फ्यूचर रिलेटेड है, फ्यूचर ओरिएंटेड। वरी जो है, वरी का जो एक नेचर है वो पास्ट ओरिएंटेड भी हो सकता है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड भी हो सकता है, बट ओवरथिंकिंग की पॉसिबिलिटी जो है दैट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। तो जब हमें फ्यूचर पता ही नहीं है, जो चीज हमें मालूम नहीं होती उससे इंसान को डर लगता है, और उस चीज को पता करने की कोशिश में या अपने आप को एक सांत्वना देने के लिए कि नहीं हम जानते हैं क्या होगा, उसके चक्कर में इंसान नेगेटिव से नेगेटिव बात सोचता है, जिससे उनका डर कम नहीं डर और बढ़ जाता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू एंजाइटी। एंजाइटी की अपने आप में जो इस शब्द का जो डेफिनेशन है दैट इज अननोन फियर. सो इट इज द फियर ऑफ अननोन. अब फ्यूचर तो अननोन ही
0: अननोन है बिल्कुल.
1: सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इट विल लीड टू एंजाइटी इश्यूज. और क्योंकि नेगेटिव सर्कमस्टांसिस के बारे में ही इंसान सोच रहा है, कोई ऑप्टिमिस्टिक थॉट प्रोसेस नहीं है, अल्टीमेटली क्या होगा दैट एंजाइटी कैन फर्दर लीड टू हैविंग लो मूड. लो मूड देन फर्दर कैन लीड टू डिप्रेशन ऑल्सो. तो ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि एक ही इशू आएगा, एक के साथ दो तीन और इश्यूज आ सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: नाउ कमिंग टू ओवरथिंकिंग को रोका कैसे जाए. देखिए प्रेजेंट में रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है. अपने आप को रियलिटी से कनेक्टेड रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसके लिए आप माइंडफुल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, यानी कि आप अपने माइंड को प्रेजेंट में लाने के लिए हर वो चीज, हर वो संभव प्रयास करें जिससे आपको सहायता मिल सकती है. किसी के लिए पेंटिंग वो जरिया बन जाता है, तो किसी के लिए सिंगिंग. आपके लिए क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. ऑन द अदर हैंड ओवरथिंकिंग इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी इन द पर्सन. तो यानी कि आप अपने बॉडी को ज्यादा मूव नहीं करा रहे. आप बॉडी को जितना ज्यादा मूव कराएंगे उतना ज्यादा आप थकेंगे. आपका जो एक मेंटल कैपेसिटी है सोचने का वो भी कम होगा, वो भी रिड्यूस होगा और आपको नींद भी बेहतर आएगी. इसलिए बॉडी मूवमेंट या एक्सरसाइजेज या डांस इस तरह की चीजें आपको हेल्प करेंगी. ओवरथिंकिंग में ये भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है कि नॉट एवरी थॉट इज रेलेवेंट. हर एक थॉट एक सिग्निफिकेंट थॉट नहीं होती. तो आप में ये समझ होना, ये समझ को डेवलप करना जरूरी है कि हर थॉट एक सिग्निफिकेंट, एक जरूरी थॉट नहीं है. तो थॉट और एक जरूरी थॉट क्या है, उसके बीच में फिल्टर कर पाना. आप खुद से इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि ये जो थॉट है क्या ये हेल्पफुल है, क्या ये थॉट मुझे ग्रोथ करने में हेल्प कर रही है, क्या ये थॉट मेरे किसी प्रश्न का सही उत्तर दे रही है. ध्यान रखिएगा सही उत्तर. क्या ये थॉट रियलिस्टिक है या मैं इमेजिन कर रहा हूँ. इस तरह के ये जो सवाल है इनको पूछ कर खुद से आप अपने ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं.
0: बिल्कुल सही कहा है दोस्तों मैम ने, क्योंकि जरूरी नहीं होता सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज्यादा थॉट्स जो है वो हमारे माइंड में चलते रहते हैं. लेकिन सबसे खास बात यही है कि उनमें से जरूरी कौन सा थॉट है हमारे लिए. लेकिन जब हम सभी को जरूरी मानकर चलेंगे, बेवजह ही मानकर चलेंगे, तो वो फिर ओवरथिंकिंग का रूप तो एक ना एक दिन ले ही लेंगे. तो वो कहीं ना कहीं वो खुद के लिए बीमारियां हम खुद ही क्रिएट करते हैं. ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है. जब हम इस जिंदगी की रियलिटी को जानते हैं तब ये सारी बातें सामने आ जाती हैं. जैसे अभी आपने ये बातें सुनी तो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पा रहे हैं खुद की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातों को, कुछ छोटी छोटी सी बातों कि हम बिना वजह ही कुछ बातों को इतना बड़ा बना देते हैं. होती छोटी सी बात है लेकिन सोच सोच कर हम उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि खुद के लिए बीमारी उत्पन्न कर लेते हैं. तो इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. उसके बाद मिलते हैं आप सभी के साथ कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर.

0: दोस्तों, इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं इस बहुत ही खास बातचीत, बहुत ही खास कार्यक्रम के साथ। तो आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की। तो हमारी भावनाएं हमारी मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़ी है और वो किस तरह से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक किस तरह से है और किस तरह से हमारी जिंदगी में ये एंटर करते हैं। एंटर तो होते ही है, खैर, लेकिन रोल क्या रहता है, किस तरह से रहता है। तो मैम, जैसे अभी हमने बात की कि किस तरह से युवाओं के लिए ये मतलब प्रोसेस रहता है या किस तरह से वो खुद को इससे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन युवाओं या बच्चों या किसी की भी हम बात करें, चाहे बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे छोटे से बच्चे, क्योंकि आजकल तो फोन छोटे से बच्चे के हाथ में जब वो जन्म ले रहे हैं उसके कुछ टाइम के बाद जो है पेरेंट्स उनके हाथों में फोन थमा देते हैं ताकि वो शांति से बैठा रहे और वो अपना काम आराम से करते रहे। तो सोशल मीडिया का जो ये समय है हमारी जिंदगी में एक तरह से इसका बहुत गहरा प्रभाव है, सुबह से लेकर शाम तक या रात की भी हम बात करें। तो क्या है कि आजकल चाहे मेरे घर की कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन मैं लोगों को दिखाने के लिए जैसे भी हो बेहतर करने की कोशिश करते, तो मुझे देखकर और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उनके मन में वो चीजें कि यार हम इतने बेहतर क्यों नहीं हो सकते हैं, हमारी लाइफ में ये सारी चीजें क्यों नहीं हो सकती हैं, हम भी एफर्ट्स करें, मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो है ना वो नहीं, घुटन सी महसूस होती है, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते। तो वो ऐसा क्यों जो है ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, किस तरह से ये जो है हमारी हेल्थ पे प्रभावित होंगी या क्या किस तरह से रहेगा?
1: जी रुचिका, देखिए इसमें दो तीन बातें हम आपको बताएंगे। पहला, आज के टाइम पे तो चलिए सोशल मीडिया है, लेकिन अगर हम लोग आज से उस टाइम में चले गए जब हम लोग बच्चे थे,
0: बिल्कुल,
1: जब हम लोग के पास फोन नहीं थे, तो उस टाइम पर भी हमारे मन में ये ख्याल आता था कि अरे उसका बर्थडे पार्टी कितना अच्छा हुआ, उसने बर्थडे पार्टी में ये पहना था
0: जी।
1: उसके बर्थडे पार्टी में तो उसके पेरेंट्स ने ये गिफ्ट दिया, हमें क्यों नहीं दिया, हमको भी ये चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि एक सेंस ऑफ कंपैरिजन हमेशा से रहा है और ये शायद इंसानों की फितरत में है, लेकिन ये इंसानों की फितरत में डाला जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे को स्टार्टिंग से ही बोलना शुरू कर, देखो उसने कैसे कह रहा है, देखो उसके वो तो अच्छे नंबर लाता है, उसको देखो वो कैसे गाना गा रहा है, तुम भी ऐसे गाना गाओ, उससे कुछ सीखो,
0: लोगों से वो कैसे बात करते हैं,
1: एग्जैक्टली, उनसे कुछ सीखो। तो जब बात आती है उनसे कुछ सीखो तो बच्चे को मन में ये आता है कि अच्छा मतलब मुझे कुछ अडेप्ट करना है सामने वाले से, कुछ ऐसा जो मेरे पास नहीं है, और मैं सिर्फ वही क्यों अडेप्ट करूं जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, मैं वो भी तो अडेप्ट कर सकता हूं ना जो मैं चाहता हूं। और हर बच्चा, ऑब्वियस है कि हर बच्चे को टॉयज पसंद होंगे, हर बच्चे को कुछ ना कुछ फैंसी चीजें पसंद होंगी, है ना, चॉइस डिफर कर सकती है, पर कुछ ना कुछ तो चाहिए ही ना कुछ तो डिजायर इंसान लेकर पैदा ही होता है। तो बात प्रॉब्लम यहाँ पर डिजायर्स की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है या कर दी जाती है कि हमें लगता है कि सामने वाला ज्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर या इंसानों के अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। अब यही चीज मैनिफेस्ट हो रही है आज की जनरेशन में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, है सेम,
0: बिल्कुल,
1: बस द मीन्स थ्रू विच इट इज बीइंग मैनिफेस्टेड वो चेंज हो गया। अब दूसरी बात हम बताएं, अच्छा हमारे अंदर किसी भी चीज को पाने के लिए जो एक अपेक्षा होती है, जो एक आशा होती है, वो दो कारणों से उत्पन्न हो सकती है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से और दूसरी इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक यानी कि कोई ऐसी चीज जिससे हमें, जो बाहरी चीज जो हमें मिले, तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है जो बाहरी चीज है, एज इन इट कुड बी वेल्थ, इट कुड बी मनी, इट कुड बी सम मटेरियलिस्टिक थिंग, इट कुड बी समथिंग एल्स, बेसिकली मोनेटाइजेशन के एस्पेक्ट में, मटेरियलिज्म के एस्पेक्ट में हमें वो कुछ मिल रहा है
0: जी।
1: उसको पाने के लिए हम एफर्ट्स दे रहे हैं, तो वो हो गया एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड व्यक्ति। दूसरा है इंट्रिंसिक, यानी कि हमें सुकून प्राप्त करना, हमें खुशी प्राप्त करनी, हमें एक ठहराव चाहिए जीवन में। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं इंट्रिंसिक मोटिवेटर के पहलू। अब जब हम सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति को कुछ करते हुए देखते हैं, किसी प्रकार का लाइफस्टाइल जीते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है हमको ये, हम ये पाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। अल्टीमेटली इंसान क्यों कर रहा है ये? कुछ भी अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? प्लेजर के लिए। तो वो सेंस ऑफ प्लेजर का जो मोटिवेशन है वो एक्सट्रिंसिक हो गया। लेकिन तीसरा पॉइंट, लोग ये भूल जाते हैं कि आपको कुछ पा लेने से खुशी नहीं मिलेगी, आपको कुछ होने से खुशी मिलेगी, आपको कुछ बनने से खुशी मिलेगी। तो इंसानों को लगता है कि मैं बाहरी का, मैं जो बाहर जो घड़ा है मैं उसको भर लूं, मैं उसको जितना भर लूंगा मैं उतना खुश हो जाऊंगा, लेकिन अंदर का घड़ा अभी भी खाली है। आप बाहर का घड़े को भरने के लिए उतने उतावले इसीलिए ही हो रहे हैं क्योंकि अंदर का घड़ा पूरा खाली है। अगर अंदर का घड़ा भरा हुआ है तो बाहर के घड़े भरने का आपको कोई शौक नहीं रहेगा। कहने का अर्थ ये है रुचिका कि इंसान मटीरियलिस्टिक चीजों की ओर या एक सेंस ऑफ पॉपुलैरिटी या फेम इन चीजों की ओर तभी जाता है जब उसके भीतर कुछ कमी रह जाती है, जब उसको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। तो अगर आपको इस चीज से बाहर आना है तो सबसे पहले आई एम नॉट गुड इनफ ये जो भावना है आपके अंदर, ये जो सोच है अपने प्रति, ये जो बिलीफ है अपने बारे में, इसको बदलिए। जिस दिन ये बदलेगा उस दिन आपको पता होगा कि हु यू रियली आर, आपको एक्चुअल में जीवन में क्या चाहिए और बाकी लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आपको उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपके अंदर से वो सेंस ऑफ कंपैरिजन ही समाप्त हो जाएगा।
0: बिल्कुल दोस्तों, कंपैरिजन जो है ना हमें जिंदगी में बहुत ही एक, और मैम जैसे कि आपने अभी कहा ना कि जो जैसे नॉट इनफ है ना, तो अगर हम बात करें, हम अपनी नॉर्मल जिंदगियों की बात करें, तो अक्सर इंसान की ये जो होती है ना इच्छाएं जो होती हैं वो कभी खत्म तो होती नहीं है। अगर हम किसी को देख के, अगर माना कि जैसे कोई है उनके किसी के फ्रेंड ने जो है वो बहुत बड़ी गाड़ी रखी है या बहुत बड़ा घर है, तो उसका दोस्त जो अभी बेचारा उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसे देखकर उसके मन में वो इच्छाएं जाग गई कि नहीं एक दिन मैं भी इतनी मेहनत करूं, या काश मेरे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी हो, इतना बड़ा घर हो, इतने सारे मतलब चीजें जो है वो फैसिलिटीज जो है वो सारे मेरे पास हो। और माना कि उसने बहुत मेहनत भी की और वो उस मुकाम तक पहुंच भी गया और वो चीजें उसे मिल भी गई, लेकिन फिर भी वो जो एक सेटिस्फेक्शन है वो खत्म नहीं हुई। फिर उसका किसी और को देख के और मन जो है वो मतलब कि एक तरह से वो इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती जाएंगी।
1: इंसान लालच है ना? लालच भी एक भावना है देखिए। सो ऑल द पीपल हु आर स्ट्राइविंग टू बिकम मिलियनियर्स, बिलियनियर्स और व्हाटएवर, वो ये नहीं बोल सकते कि हम तो बस एम्बिशियस हैं, हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, वाई आर यू सो इनसेंसिटिव, वाई आर यू सो इमोशनल, दैट इज नॉट ट्रू। इवन दे आर इमोशनल, इवन दे हैव फीलिंग्स बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम ग्रीड, एंड ग्रीड इज अ फीलिंग।
0: तो इम्पोर्टेंट यही है कि हमें सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैम ने कहा कि जो हमारा अंदरूनी घड़ा है ना वो खाली है, बाहर वही आंखें जो है वो तभी तो थकती नहीं है ना, देख देख के वो बात होती है ना कि बस देखते जाइए और वो इच्छाएं पालते जाइए अपने अंदर।
1: वही बिल्कुल, देखिए इच्छा रखना गलत नहीं,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन वो इच्छाएं आपको अंधा कर दे
0: जी, ये ठीक, ये गलत है बिल्कुल। तो फिलहाल हमें भी आपकी जो इच्छा है वो उसे तो हम नहीं जाने देंगे क्योंकि वो तो छोटी सी इच्छा है और वो है एक प्यारे से गीत की। तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक को और उसके बाद फिर से वापस आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: 91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो आइए दोस्तों बहुत ही खास बातचीत मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल स्वास्थ्य यानी कि भावनात्मक स्वास्थ्य हमारे लिए किस तरह से हमारी जिंदगी में रोल अदा करता है या किस तरह से जरूरी रहता है। तो बहुत सारी खास खास से बातें जो है हमने आप सभी के साथ साझा की, खास करके मैम ने आप सभी के साथ साझा की है कि कौन कौन सी बातें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने इमोशंस को जो है वो एक तरह से रेगुलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दबाने चाहिए, क्योंकि दबाना भी कहीं ना कहीं बीमारियों का संकेत है, तो बीमारियां कोई नहीं चाहता। तो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मैम अक्सर हम डेली की बात करें, जिंदगी की बात करें, डेली रूटीन की हम बात करें, तो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, कोई भी हो, तो जो कहते हैं दो वक्त की रोटी, उसी के लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात को नींद तक चैन की नहीं सो पाते।

0: इंसान अगर नींद नहीं आती है तो वो इंसान को बहुत सारे लेवल पर परेशान कर जाती है। ऐसे मानिए कि ब्रेन और माइंड वो साइकिल के दो पहिए हैं, ये साथ साथ चलते हैं, ये अलग अलग नहीं है। ब्रेन के कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं, स्पेशली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग, हमारे एनालिटिकल थिंकिंग के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो उसको ऑपरेट करता है। यहाँ तक कि इमोशनल जो हमारा ईक्यू होता है ना, उसको भी। अब जब इंसान सही से सोता नहीं है, नहीं सो पाता है, तो क्या होता है? स्लीप का क्या काम है? बेसिकली स्लीप का काम है कि वो हमारी बॉडी को, हमारी मसल्स को कम्प्लीटली रिलैक्स कर दे और जो हमारी सेल्स हैं उन्हें रिज्यूवनेट कर दे, और हमारी सेल्स बार बार बनती हैं, नई डेवलप होती है। अगर नींद नहीं आएगी, और ये सब नींद के दौरान हो रहा है, नींद नहीं आएगी तो क्या होगा? हमारी सेल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी, हमारे जो सेल्स को रिज्यूवनेशन चाहिए था उन्हें वो नहीं मिल पाएगा, और जो हमारी मसल्स को रिलैक्स मिलना चाहिए था, रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए थी, उनको वो भी नहीं मिल पाएगी। यानी कि पूरी बॉडी ओवरऑल एंड ब्रेन इन इटसेल्फ, ये सब कुछ एक स्ट्रेस के अंदर अपने आप को महसूस करेगा, जिसकी वजह से ब्रेन सही से काम नहीं करेगा। जब ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर जब इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे क्या होगा? उससे इंसान सही से सोच नहीं पाएगा, उसका दिमाग ठीक से काम ही नहीं करेगा, वो डिसीजंस नहीं ले पाएगा, लेफ्ट को राइट बोलेगा, राइट को लेफ्ट बोलेगा, सामान कहीं रखेगा और भूल जाएगा। लेकिन मेमोरी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है कि वो भूल ही गया। कई बार ऐसा हुआ कि चश्मा सर पे लगा रखा, पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहे होंगे। मूड में एक प्रकार का चिड़चिड़ापन आ जाएगा, क्योंकि बॉडी आपको ये बताना चाह रही है, जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस उसने क्रिएट किया है बॉडी ने, वो इसलिए कर रही है कि वो इंसान को बता सके कि आपको रेस्ट की जरूरत है। तो अगर आप सही से रेस्टेड नहीं है, इफ यू हैव नॉट स्लेप्ट वेल, तब आपको ये सब तरह के इश्यूज महसूस होंगे। जब बॉडी ही स्ट्रेस में है तो वो आपको साइंस एंड सिग्नल्स भी देगी ही ना कि आपको रेस्ट करने की जरूरत है, इसलिए बार बार नींद भी आएगी, मूड चिड़चिड़ा रहेगा, यानी कि लोगों से बातचीत ना करो, बॉडी बार बार बोलेगी आप कोई काम मत करिए, आप जाकर बस सो जाइए, क्योंकि ना काम ढंग से करने देगा वो, ना लोगों से बातचीत सही से करने देगा, कोई मीटिंग होगी तो वहां बात बनने की जगह बात बिगड़ हो जाएगी। तो स्लीप का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ। इसके साथ साथ क्या होता है कि स्लीप नहीं होने की, पूरी नहीं होने की वजह से इंसान के अंदर हार्मोन्स का जो एक इम्बेलेंस स्टार्ट होता है, उसमें कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। अब बॉडी को लगेगा कि कुछ तो इश्यू है, अब मैं सर्वाइवल मोड पर हूं, तो इसीलिए मुझे अपने वॉरियर्स भेजने पड़ेंगे, तो वो अपने कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा देती है। और फिर उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो, या स्किन प्रॉब्लम हो, या आंखों के नीचे काले गड्ढे हो, वो सब शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि आपका डाइजेशन भी इम्पैक्ट हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि ये सारा काम सोते टाइम ही हो रहा होता है, तो अगर आप सोएंगे नहीं तो ये सब इम्पैक्ट होगा। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ खराब। नाउ कमिंग टू रुचिका, आपका सेकेंड पॉइंट जो था
1: जी,
0: हमारा खान पान। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं, तो बेसिकली हमारी बॉडी वाटर कंटेंट है, उसका अपना पीएच वैल्यू होती है। आज के समय पे हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें एसिडिक कंटेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो पीएच मात्रा है वो एसिडिक हो चुकी है, जिसकी वजह से अब लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम, दिक्कत बहुत ज्यादा। अल्टीमेटली आपको बॉडी, आपकी बॉडी आपको साइंस दे रही है कि दैट समथिंग इज नॉट ओके। कमिंग टू दिस, कि हमारा जो गट है, हमारे गट में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्ट सिग्नल भेजते हैं टू द ब्रेन, और अगर गट में कोई इश्यू है तो ब्रेन को तुरंत पता चलेगा कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो आपका मूड खराब करेगी। क्योंकि बॉडी आपको कैसे सिग्नल देगी? बिहेवियर के थ्रू, इमोशन के थ्रू, थॉट के थ्रू, ये सारी माइंड के वेज है टू कम्युनिकेट विद यू। तो बॉडी और ब्रेन इकट्ठा काम कर रहे हैं टू गिव यू सिग्नल्स एंड टू टेक योर अटेंशन ऑन that there is something not okay with your body, कि probably आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि issues ना हो। क्योंकि एक बार आपका digestion खराब हुआ, आपको अच्छा ही महसूस नहीं होगा, आपके serotonin levels ही down हो जाएंगे, समझ रहे हैं? serotonin down होने का मतलब है आपका mood low हो गया, irritability आ गई आपका, आप बाहर जाना आपका कम हो गया, आप depression की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए, और ऊपर से एंजाइटी भी बहुत होती है ऐसे टाइम पे, तो इसीलिए आपको अपना खान पान का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी ने जाना कि सिर्फ नींद और खान पान की हम बात कर

0: तो अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाए तो हमारी पूरी रूटीन बिगड़
1: बिल्कुल,
0: सकती है।
1: कई ऐसे
0: और
1: खाने होते हैं रुचिका जो हमारे बॉडी में स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर हमें खुश रहना है तो हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे जिससे हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो
0: बिल्कुल
1: ऑब्वियसली हमारी इमोशनल हेल्थ बेटर होगी। तो लोगों को थोड़ा सा इस पर सोच समझ के अपना खान पान बनाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो मन किया वो खा लिया खा सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमें उस पे विचार करना भी
1: बिल्कुल
0: जरूरी है। तो बहुत ही ये खास बातचीत जो है दोस्तों आप सभी ने जानी सुनी समझी, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसी चीजें होती हैं या कभी भी आपको ऐसे सिम्टम्स लगे तो आप जरूर इस पे गौर कर सकते हैं और इस पे ध्यान जरूर देना चाहिए, नहीं तो फिर एक भी हेल्थ अगर थोड़ी सी आगे पीछे हो गई तो सारी हेल्थ जो है हमारी बॉडी की पूरी गड़बड़ा जाएगी, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली, क्योंकि सारे आपस में जो है ये रिलेट है, और एक का भी हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जहां हम खुद का ही ध्यान नहीं रख पाएंगे तो फिर जो परिवार का हम ध्यान रखते हैं वो कैसे रख सकते हैं। तो बिल्कुल अब इसी बातचीत के साथ जो है दोस्तों अब समय है आप सभी से अलविदा लेने का भी, लेकिन हाँ एक खास बात, अगर आपको लगता है कि आप और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन है, हमारी बातचीत जो है जो आप सभी तक पहुंच रही है, क्योंकि आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं, क्या इस समय जो है कंफ्यूजन है किस बात को लेकर, वो आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो उसके लिए आप सभी प्रियशी मैम के साथ जो है वो बात कर सकते हैं, हमारे नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं, और वैसे भी नहीं तो आप सेंटर भी आ सकते हैं डायरेक्टली। तो हमारे सेंटर का पता है
1: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला गांव, धर्मशाला।
0: और कांटेक्ट नंबर भी लिख लीजिए।
1: 9354134057।
0: जी दोस्तों, तो ये हमारे सेंटर का पता और नंबर भी आप सभी तक पहुंचा दिया गया है। तो जरूर अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि दोस्तों मेंटल हेल्थ की हम बात करें ना, अगर छोटी सी भी लापरवाही हम दिखाते हैं तो हमारे लिए ना लाइफ टाइम के लिए वो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाती है, और एक बार प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो फिर सालों लग जाते हैं उसे ठीक करने के लिए, और कई बार सालों लगाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाती है, क्योंकि शुरुआती दौर में हम ध्यान नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ये बेहद जरूरी है, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी शर्म और बिना उन सोसाइटी के चार लोगों की बातों के सोचे बिना जो है अपने बारे में सोचिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए, और उसके लिए एक बेहतर सा कदम उठाइए। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रेयसी
0: कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई कड़ी के साथ, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई ऐसी बातचीत हो जिसपे बात करनी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर आपने नोट किया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि विषय पे बातचीत होनी चाहिए ताकि लोग उसके बारे में जान सके। तो जरूर आप हमें मैसेज कीजिए ताकि हम उस पर बातचीत कर सके, अपने जो विचार है खास करके प्रियशी मैम की जो राय होगी, जो भी उस पर समाधान होगा वो आप सभी तक पहुंच सके। तो फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ, तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की।

मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान बना चुका है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, मध्यम वर्गीय का स्तर बढ़ने और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित कर रही हैं। वित्त मंत्री ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं में भारत के डिजिटल तंत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उच्च अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में पायलटों और चालक दल के सदस्यों के शरीर में मनोसक्रिय पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने वाला मोकाडोप टेस्ट सिस्टम और नागर विमानन आवश्यकताओं CAR में जरूरी बदलावों पर चर्चा हो रही है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और एयरलाइन ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। नॉर्वे में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की जा रही ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया। नॉर्वे की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAEC के साथ एकजुटता दिखाते हुए इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को खत्म करने की मांग की। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. Harish ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में किए गए उल्लेखों का लोखे को खारिज कर दिया है। भारत ने इन्हें राजनीति से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण बताया। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICERD के तहत भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद समिति की रिपोर्ट को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इसमें रचनात्मक ढंग से भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए भारत और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल यूक्रेन के 35वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूक्रेन के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका के बीच दूसरे दिन के मुकाबले में चौथे दिन का खेल जारी है। पोलैंड ने ताजा समाचार मिलने पर 2 विकेट पर 100 रन बनाए। पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पाली में भैया
1: भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: ये कहां से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक

नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: मैं 3-2-1 करूंगा, तुम्हें ना गंदी सी ऐसे करके शक्ल बनानी
9: है। इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन
0: पाएगी। कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आज ही रोज रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

बहुत बार सलाह की है, बह के अपने दिलों ने मर भी जाते तेरी सब, पर मर के भी तू मिलना नहीं।

291 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रिंगटोन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्यारे से पंजाबी गीतों के सफर को आप सभी एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: पानी में भैया
1: गई से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: कहाँ से उठा कर लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में बहस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक

बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी सी ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
8: ओह नो,
9: इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन
0: पाएगी। कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है?

कानू दशमलव तो मेगाहर्ट्स पर ए तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला करे मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारें दा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तो जरूर इसी नमस्ते कन्ने हां अपने कार्यक्रम दा जेड़ा शुरुआत है, जेड़ा अपनी गलबात का जेड़ा दौर है से जरूर शुरू करी ते है। कने तुहां सारे भी जुड़ी होने न इंतजार जेड़े से तुहां जो रहिंदा है कि कालू दिया दो बजदे न कने जेड़ा दोपहर दा जेड़ा समय है से तुहां जरूर माटी दी मेह कार्यक्रम दे सफर करने बितांदे न कने जेड़ा तुहां दियां फरमाइशां न सभी तुहां इस कार्यक्रम च सुनदे न। तो इंतजार बिल्कुल खत्म है, तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़िया कन्या हाँ कन्ने गल बात जेड़े से जरूर करा। गल बात कन्ने हाँ अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से करी लैंदे न पहले, फिर ही बाकी दियां जेड़ा गल्लां न से तुहां तक पहुँचांदे न।

0: दर्शकों तो सारे सुनिया ही प्यारा दिया गीत प्यारी दी शुरुआत। इसी शुरुआत करने पहले जेड़ा श्रोता न सियाह करने जुड़ चुके हैं कर दिन तिना करने गल बात। हेलो हेलो हेलो श्रोताओं कोल जेड़े से जरूर डिसकनेक्टेड हो तहां फिर ते अपनी कार्यक्रम दी जेड़ा शुरुआत है से करी थी हुए कने श्रोता जरूर कोशिश करा देन अहाँ भी जरूर कोशिश करा देन कि तिना जो जोड़न तो है फिर ते जुड़ चुके हैं फिर ते तिना दी आवाज़ जेड़े से तुह तक पहुँचा देन। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो हाँ जी
0: तो कॉल जेड़े से जरूर डिसकनेक्ट हुई तो फिर ते अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कने अजकनी जेड़ा गलबात है से क्या रहनी है तेरे उपर नज़र जेड़े से दौड़ाते हैं क्योंकि गलबात जेड़े से हमेशा अजकना जेड़ा दिन है दिने दी अहां शुरुआत करते हैं तो दिने दी शुरुआत जेड़े से किस प्रकार रहती है तेरे उपर भी अहां गलबात करनी है कने जेड़ा अजकना क्या खास दिन अहां बना देन या क्या इतिहास दे पन्ने च दर्ज हुई है था कि अज जेड़े से क्या जेड़ा खास दिन अहां बना देन अज अहां जेड़ा खास दिन बना देन से बना देन महिला सम्मान दिवस तो जरूर इहदे उपर अहां चर्चा करनी है कने श्रोता जेड़ा न से बार बार कॉल करा देन अहां भी कोशिश यही करा देन कि तिना दी कॉल जेड़ा है से अहां जरूर अटेंड करने कने तिना दी जेड़ा आवाज़ है से तुह तक पहुँचान। हेलो
1: हेलो मैम नमस्कार जी।
0: हेलो
1: हेलो मैडम जी नमस्कार।
0: हेलो
1: हाँ जी मैम नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते जी मेरी आवाज़ जेड़ा है से तुह तक पुजा दी जी।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल पुजा दी जी।
0: जी तुह कुथों ते बोला दे कने तुहां दा ना के है जी।
1: मेरा नाम रिंकू है मैडम जी। मैं बोला था बैजनाथ भुनौर ते।
0: जी रिंकू जी बैजनाथ ते बोला दे।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी ता रिंकू जी क्या हाल चाल है जी बैजनाथ हालियां दे।
1: बढ़िया मैडम जी बस थोड़ी थोड़ी बरखा लगी हुई है ठीक ही है हाल चाल।
0: जी अच्छा बरखा लगी हुई है उस साइड।
1: हाँ जी हाँ जी थोड़ा साइड लगी है बरखा।
0: जी साइड ताली नहीं लगी है बरखा।
1: अच्छा अच्छा
0: जी जी और नवा ताजा।
1: नवा ताजा मैम पुराना ही है तो सुना धर्मशाला दी नवीता जी।
0: जी धर्मशाला दी भी ये कि कदी मौसम जेड़ा से बरखा हो जांदी है कदी बदल आ जांदे है ना जी।
1: जी
0: टिंकू जी कदिया लगदा तो जो ये कार्यक्रम माटी दी महक
1: बहुत बढ़िया मैडम जी। हां तो रोज ही सुनदे तो दा प्रोग्राम।
0: जी अच्छा रोज ही सुनदे।
1: हां जी हां जी
0: जी ता आज यहां जेड़ा गल बात करा देन से करा देन महिला सम्मान दिवस दी ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी तो तुम्हें क्या लगता महिला दा सम्मान करना कितना जरूरी है।
1: जरूरी है मैम महिला दा सम्मान करना जरूरी है क्योंकि महिला आगे जांगी है ता ही अहां दे प्रदेश दा बल होना कने पूरे समाज दा।
0: जी जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छी सोच है क्योंकि महिला जेड़े से घरे तक सीमित नहीं है ना जी। हुण
1: हाँ जी हाँ जी
0: घरे दे काम भी करते न लड़की दा जेड़ा रोल ऐसे भी निभांदी है ना जी।
1: हां जी हां जी हां जी
0: जी ता आज तुहा कुंदिया जेड़ा गीत ऐसे सुनना पसंद करके
1: आज लगाई दिया थुआ धर्मो बड़ा होशियार।
0: जी धर्मो बड़ा होशियार
1: चिड़िया दी छनकार।
0: जी जी जरूर एक ही ते फरमाइश तो तक पहुंचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: हां जी जी
0: जी
1: ठीक है मैम थैंक यू जी।
0: जी वेलकम जी ए है तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशो तो महिला सम्मान दिवस दे बारे च अहां जेड़ा गलबात करा देन हर साल 26 अगस्त जो महिलाओं के प्रति समाज या पुरुषों के बराबर जेड़े से अधिकार देने दे या संघर्ष के प्रति सम्मान देने वास्ते अहां ये दिन जेड़े से आज बना देना। तो जरूर तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह करने जुड़ी सकते कन्या कन्ने गल बात।

कही सकते। इसी गल बात करने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सफर अगे बढ़ेगा ताई तो जेड़ा फरमाइश है ना सियाह तो तक पहुँचाई सकते, कने तो हाँ भी इस कार्यक्रम दे सफर शाह कन्ने जुड़ी सकते। तो जरूर इस सफर कन्ने जुड़ने वास्ते जेड़ा हाँ दा नंबर है से तुह तक पहुँचाई दे ना, क्योंकि नंबर तुह तक पहुँचाऊंगा ताई तो तुह इस नंबर पर कॉल करी सकते, कने टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज जेड़ा है जरूर करी सकते। नंबर है 701-811-7091। नंबर तुह तक पहुँचाई तो है, बाकी जेड़ा काम है से तुह है। इसी कन्ने अह भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने फरमाइश तुह तक पहुँचा देन, जरूर तुह सारे इंजॉय करा।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हो है व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाव है रीना जी। तो जरूर रीना जी तपोवन दे रहने आ रहे न कने तिना तक का हाँ ये भजन ये फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय की थी। कने अगले जेड़ा श्रोता न सभी यहाँ कने जुड़ चुके हैं न कर दें तीना कने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते शशि जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: जी? जी बिल्कुल जी धन्यवाद जी। और तुम ठीक ठाक
0: जी? यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
1: अच्छा जी
0: जी क्या काम कार लगे या जी क्या करा दे?
1: बस थोड़े प्रोग्राम में सुना दे
0: जी। अच्छा प्रोग्राम में सुना दे
1: जी बिल्कुल
0: जी। तो कदी लगा दी तो हम जो गल बात
1: बहुत बढ़िया जी।
0: जी जी जी तो आज हाँ जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा दे न से तो हम सुनी कि नहीं सुनी?
1: बिल्कुल सुनी जी।
0: जी तो तुहां भी एक महिला है जी तो तुहें क्या लगदा आज यहाँ जेड़ा खास गल बात करा देन या खास दिन बना देन जेड़ा आज कने दिने दा इतिहास दा पन्ना है ना से यहाँ जो ये बोला था कि महिला दा जेड़ा समानता दिवस है से यहाँ कै बना देन या तिना दे जेड़ा अधिकार हैं से कितने की जरूरी है ना जी?
1: जी
0: जी
1: उससे मैं एक गल बोलना चाहती दिखा
0: जी
1: अहाँ तो दुबे तो एक्सपेक्ट कर लेंगे ना कि महिला का सम्मान करो लेकिन सार से पहले जड़ी महिला जड़ी ऐसा महिला ही दुश्मन है।
0: जी जी
1: अहाँ तिथु सबसे पहले गलत होंगे कि अहाँ एक दुबे से ईर्ष्या करेंगे
0: जी
1: जलसी करेंगे है ना
0: जी
1: ता कुछ ना कुछ अगर छह हाथ बैठन तो अहाँ तिथु चिड़ाएंगे तिना ते
0: जी।
1: अगर जिया एक घर च दराणी जठानी है ना तो तिथु दिख रही तिथु भी तिना च मतभेद होंगे रहा ससू नुमा च भी चलो थोड़ा बहुत नेचुरल लेकिन कई कुछ कुछ कुछ जगह तो मतलब हाथ देते पार ही है
0: जी जी
1: है ना कुछ कुछ तो ऐसा बड़ा ही बुरा हाल है घर का देखिए तो मैं तो यही बोलना चाहिए अगर दुब मतलब हाँ मर्दा की अपेक्षा अगर हाथी रहते उम्मीद रखन तो इसके पर समझो आप सुधरना चाहिए लेडीज यू अगर हाँ लेडीज एक हो गई ना तो हाँ कोई मतलब कुछ नहीं बिगाड़ी सकता तो यह दिना मनाने की जरूरत भी नहीं पौनी फिर
0: जी जी
1: क्योंकि एक लेडीज का जो रोल है बड़ा बड़ा है
0: जी,
1: एक माँ है
0: जी,
1: बेटी है बहू है कुछ भी है ना बहन है बड़ा कुछ है तिहार रोल पर यही ना पर मैं तो यही बोलती कि जी पहले अगर लेडीज हाँ लेडीज समझ जाएंगी तो ही हाँ इज्जत करेंगे कोई
0: जी
1: तक हाँ लेडीज की इज्जत नहीं करे तो कुछ नहीं करे तो फिर मर्द तो हाँ कोई उम्मीद नहीं रखी सकती
0: जी जी
1: अगर हाँ अपने बच्चे सही ढंग ने संस्कार दे देना तो हाँ दे बच्चे कुछ भी बच्चे ही मतलब कुड़ी है कि या कुछ भी है उन्हें कुछ गलत नहीं कहलाएंगे करना अगर तिने हाँ शुरू तो दसगे कि हाँ तिना सम्मान करा ता ही तिना सम्मान करना अगर सास नू नगर च अगर एक सास अपने बच्चे अच्छे संस्कार दें अपने मुंडे समझाती कि नहीं बच्चा यह भी बगानी ती ली सही ढंग ने रखनी कहना धीया हाई रखनी कहना ढंग तब मजाल के जिते भी कुछ कला पोए कुछ नहीं होंगे
0: जी जी
1: तो यह जी तो मैं यही है कि मेन मोटिव मेरा ही है बोलने का गल मेरी खुद ही अगर पता नहीं खुशी चल बुरी लगा दी होंगी तो सॉरी पर मैं कुछ कुछ दे मतलब स्पेशल गल नहीं कराई मैं हर घर की गल करा दी मैं एक आम गल करनी क्योंकि मैं भी एक गृहिणी है एक वाइफ भी है कहना एक बहू भी है एक बेटी भी है एक बहन भी है ना
0: जी मतलब सारे रोल तो हाँ भी निभा दे बाकी जेड़ा महिला से भी अपना अपना रोल जेड़ा ऐसे जरूर निभा दे है ना जी। पर कई बार अहां ये जेड़ा अहां दी सोच विचार है या अहां दे जेड़ा संस्कार है अहां बार बार संस्कार जो कई ले कर होंदे कि अहां किस तरीके ने अपने संस्कार रखा देन या किस तरीके ने अपना जेड़ा व्यवहार ऐसे रखा देन जी
1: जी तुहाड़ा व्यवहार ही हाड़े संस्कार है दसदा कि हाड़े संस्कार क्या ने
0: जी
1: बोलते ना कुछ दी वैल्यू पैसे ने नहीं होंगी कुछ ना कुछ नहीं होंगी अगर बंदा कुछ हल पैसा है वो जिसकी सामने जिसकी वैल्यू मतलब करा दे भी आने दी इज्जत पर पीछे दे जिसकी को कुछ गला देती था चीज दे भी क्या फायदा
0: जी जी
1: अगर दिल रिस्पेक्ट हो तो दिले तो हो ना
0: जी जी
1: तो वो तो रिस्पेक्ट होंगी
0: जी जी ता इंदु जी आज तो हाँ कुंदिया जिड़ा गीत ऐसे सुनना पसंद करके
1: सोची के दस्ती में तो मैं व्हाट्सएप कर दिया है गाना ना
0: जी जी जरूर
1: जी।
0: जी चुनने वास्ते
1: पहले
0: बड़ा
1: मैं गाने का नहीं सोचा, फिर सोचा मैं तो हाँ गल की थी, तो चलो मैं एक गल करनी थी, मैं अपनी गल रखना भी जरूरी
0: जरूरी
1: है
0: है जी, बड़ा जरूरी है जी। जुड़ने
1: जी।
0: वास्ते
1: किस
0: बड़ा बड़ा
1: करके
0: धन्यवाद
1: तुम्हारा
0: जी तुहांदा
1: बड़ा बड़ा धन्यवाद जी।
0: जी। तो श्रोताओं तुम सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी गूंज कन्ने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ा देना कन्ने तुह जो लेकर चल देना अगली फरमाइश की ओर सुन देनी सा प्यारी दिया फरमाइशा जो।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तो सारे सुनया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश। फिर ते हाँ वापिस अपनी गलबात उपर आई हो तेने आज जरा हाँ गलबात करा देन से करा देन महिला समानता दिवस के बारे च, यानी कि महिलाओं के जड़ा अधिकार हैं तेरे उपर गलबात अहाँ करा देन कने अगले जड़ा श्रोता ने तिना कने कर देन पहले गलबात। हेलो
1: हाँ जी नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी हाँ जी वधिया जी।
0: जी तुहां कुत्थे दे रहने आले?
1: ठीक ठाक दे रहे, नाराजगी है थोड़ी तुहां ते।
0: जी बोला जी।
1: मैं कल का दे फोन ना करा था तुहां, चुक्का नहीं कर दे रहे मेरे फोन में।
0: जी ऐसा कुछ नहीं है जी, यहाँ वास्ते तो सारे श्रोता एक ही बराबर हैं ना जी।
1: जी
0: कॉल पर कॉल होंदी तो मोबाइल फोन च पता भी नहीं चलता ना जी।
1: मिस्त्रियां काम करदा ना
0: जी। जी
1: तला ये सोलिंग करना मकान
0: जी। अच्छा काम करा दे कने रेडियो भी सुना दे कने।
1: हां जी हां जी
0: जी। ता टिंकू जी आज तो हां कुंदिया जेड़ा गीत ऐसे सुनने अपनी पसंद छ
1: धोबने सुनाई दे तो। हां
0: जी अच्छा धोबन सुनने तो।
1: हां जी हां जी
0: जी जरूर धोबन गीत जेड़ा ऐसे तो तक पहुंचा दे जी। जुने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुम्हारा।
1: थैंक यू जी थैंक यू
0: जी। तशो तो गल बात अहां करा देन महिला समानता दिवस के बारे च, तो जरूर ये उपर अहां नज़र थोड़ी देर दौड़ान देन। हर साल 26 अगस्त जो जेड़े से महिला समानता दिवस अहां बनान देन कने इस दिन की शुरुआत जेड़े से साल 1920 जेड़े से अमेरिका द्वारा महिला जो वोट देने का जेड़ा अधिकार है से मिलिया था। अधिकार जिहड़ा सोचिए हर अधिकार जिहड़ा से महिला जो मिलना जरूरी है, चाहे से वोट का अधिकार है, चाहे से समानता का मतलब है कि घर च कोई भी अहाँ फैसले लैन देन तो तिना जो पुरुषों के बराबर जिहड़ा से अधिकार मिलना जरूरी है। क्योंकि कई बार होंगे ना कि अहाँ सोच विचारे करते हैं कि महिला जिहड़ा से घरे का हर काम करती है, फिर भी अगर अहाँ समान अधिकार नहीं देंदे तो कुछ ना कुछ अहाँ कुछ अधिकार हैं तिना ते वंचित जड़े ऐसे जरूर रही आते हैं। तो इसी कन्ने अगले जड़ा श्रोता है तिना कन्ने कर देना गल बात।
1: हेलो शशि मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुम्हारा रेडियो।
1: ठीक ठाक है मैडम जी?
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी, तुम ठीक ठाक है
1: ना? मैडम बड़ा अच्छा टॉपिक लिया आज
0: जी, धन्यवाद जी।

0: ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਨ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਬੱਸ ਬਹਿਣਾ ਤੱਤੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੜੋਤੀ ਉਹਦਾ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਚਾਹੇ ਖਰਾ ਲੱਗਾ
1: ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ
0: ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੇਡੀ ਜਬ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਸਾਰੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ वार्तालाप मैडम जी गीता रोज सुन दे वार्तालाप हों बड़ा अच्छा नॉलेज आला लाने बहुत वधिया
1: स्वागत
2: है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला छे ठीक ठाक है ना
1: जी धन्यवाद
2: जी जी कुथु ते बोला दे जी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी जी क्या काम कार तो हल गया क्या करा दे जी
1: बड़ी बड़ी गल दसी जेडी कल ने दसी ना
2: जी तो हुंदी आवाज जेड़े से बड़ी कट्टी कट्टी के ओदी जी
1: हां जी
2: आवाज जेड़े ना से बड़ी कट्टी कट्टी के ओदी जी
1: अच्छा तो तू पहले मेरी फरमाइश सुन लिया रंग बिरंगा जा सुनाई नहीं अगर कुटुंब जांदा था
2: जी जी जी उन अपनी गल बात जरूर रखी दिया जी क्या बोला दे तू
1: हां पहले जेडी गल चली हुई ना
2: जी जी
1: जनानी का सामान ठीक है
2: जी
1: थोड़ा वे तस्वीर लेकर एक तो दो के लिए कैसे होंगे ये पूछता हूं
2: जी जी
1: मतलब अगर ऐसा बनी जाता खड़ोना
2: चाहिए
1: सामना करना चाहिए अपनी जान नहीं देना चाहिए
2: जी सही है ना कि उन्हें जो भी जीने का अधिकार है ना जी
1: हां जी जान देना चाहिए जान देना ना लिखा बार बार ये मुंह सुन नहीं मिलना
2: जी
1: तना जी सिंह ने बड़ी परेशानी है ससुराल वाले अस्पताल में जेब जटानी ना करे वाला चल रहा
2: जी
1: आजकल कई कॉलोनी कार्रवाई चली है
2: जी जी
1: क्या तो हां करा ना अपने माओ प्यो कह नहीं चलते पढ़े लिखी
2: पढ़ूंगी
1: चुप रहना सुनी लाना सब कुछ लेकिन आज वो टाइम नहीं
2: जी जी
1: आत्महत्या है ये ठीक नहीं है मैं तो सारे बस ये दसा जटी के मुकाबला करो
2: जी जी
1: उसका कुछ समाधान जरूर मिलेगा
2: जी कोई ना कोई समाधान जेड़ा ऐसे निकले होंदे पर हां सिर्फ यही सोची करी चलदे ना कि अगर हां अपनी जिंदगी दी जेड़ा जीवन लीला उस समाप्त कर लेंदे ना ठीक है हां दी जिंदगी दी जेड़ा लीला ऐसा तो समाप्त हो जाती, पर अगर जिहड़ा बच्चे न या पेरेंट्स हैं या हर कुछ का अपना अपना फैमिली है ना जी, तो थोड़ा
1: हाँ यार,
2: जी
1: वो तो है ना, लेकिन एक गल है ना, देखा
2: जी
1: था सारे 6 बंदे हैं, दो
2: जी
1: मियाँ बीबी अगर जितने ना बेबी सगरान हुआ था कहना
2: जी
1: सवेरे से ठीक लगा है सारे
2: जी
1: वाले जी, सारे बीच बीच कई आदमी ऐसे थे ना, पता नहीं होता कुछ क्या होया,
2: जी जी
1: लेकिन क्या लोग है फिर गलत कदम चुकी लेना था पता लगता क्यों हो गए कहीं हुई है, तो कोई इस आदमी पता होना चाहिए, दसना चाहिए थे ना
2: जी
1: कि
2: जी
1: नहीं जो ये परेशानी हुआ थी
2: जी
1: मैंने तो वहां समाधान कराएगा,
2: जी जी क्योंकि हर चीज़ का
1: ठीक है ना जी।
2: समाधान होता ना जी, कने अहाँ पर निर्भर करता कि अपनी जेड़ा सोच है, सोच विचार या शब्द अहाँ बोली सकते, हमेशा पॉजिटिव रखा ना जी,
1: हाँ जी हाँ जी
2: या
1: बिल्कुल
2: अपना मन कम्मे ने लगाई कर रखा या रेडियो करने लगाई कर रखा ना जी।
1: जी जी
2: जी
1: बिल्कुल
2: क्योंकि अगर अहाँ अच्छा सोच दे ना तो हमेशा अच्छा ही होता है ना जी।
1: अच्छा ही होना, अच्छा ही
2: जी
1: होना
2: क्योंकि
1: बिल्कुल
2: अच्छे विचार खुद अंदर रख गए, कन्या दोया जो भी अच्छे विचार देंगे ताई अच्छा हाँ सोची पांदे ना जी।
1: और तो गल नहीं है
2: जी
1: ना, देखा कितनी खर्चा पिया, तो जेडी जनानी सवेरे मतलब ग्राउंड सैर करती हुआ है
2: जी
1: ना, बिल्कुल निकल जाना है, बड़ी
2: जी जी
1: निकी है,
2: जी
1: और
2: जी
1: इतना क्या हो गया 10 मिनट, बल्कि तुमने भैणा वाला अपनी वास्ते फोन भी किया
2: जी
1: कि मैं दे दे कम करना लगी, भैणा बोले भी रुक जा थोड़ी देर
2: जी जी
1: मैं लगी जाऊँ,
2: जी
1: इतनी देर तो ये तो 2 मिनट लगते, 2 मिनट में लगते स्पीड से लगते समझ लिया,
2: जी
1: इन्हें चुनिए ने पंखे ने लगाई लिया पंदा बस खत्म।
2: जी तो मेघनाथ जी आज तो हाँ कुंदिया गीत जेड़े से सुनने जी। जी जरूर तोहंदी जेड़ा फरमाइश है से तोह तक पहुँचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तोहंदा
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी,
2: जी।
1: बहुत बहुत
2: ये तो हाँ सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशो तो अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न, कने फरमाइशा का दौर भी जरूर तुह तक पहुँचाना है, कने जेड़ा गलबात का दौर है सभी
3: आया हुआ था धोबी के लाख मन।

0: આંબોલા દેન રેડિયો ગુંજન ધર્મશાલા તેક અને તોહા સારે ઇસ વખત કાર્યક્રમ સુણા દેન આપની રેડિયો દો શશી કન્ય 26 અગસ્ત 2026 દી ગાલ કરીએ તો આજ અહાં જેડા ગલબાત કરા દેન ક્યા ગલબાત કરા દે તોહા સારે ભી જરૂર સુણા દેન કાન લગાઈ કરી सुनना भी ज़रूरी है, गीत संगीत सुनना भी ज़रूरी है, गलबात सुनना भी ज़रूरी है। समानता का मतलब अगर हाँ थोड़ा जहा समझिए, महिला जरा समानता दिवस आज हाँ बना देन सकय बना दे। आज के दौर की हाँ गल करिए महिला जड़े से हर तरफ जड़े से तरक्की करा दी है, या ये बोली सकते अपने देश का ना जड़े से रोशन करा दी है। घरे तक सीमित नहीं है, घरे ते बाहर भी जड़ा कामयाबी जड़े से हासिल करा दी है। मेहनत करी करी अपने जड़ा हौसले न तिना जो ज़रूर जड़े से बुलंद करा दी है। आपस आस पास का जड़ा माहौल है, या महिलाओं जो आज हाँ सम्मान देने वास्ते या सलाम देने वास्ते ये दिन जड़े से बना देन। क्योंकि शिक्षा दी गल करिए ता शिक्षा च भी जड़ा एक लड़की है या एक महिला है से हर तरह दा रोल जड़े से अपनी जिंदगी च निभा दी है। एक श्रोता हाँ कने जुड़े थे, तिना बोलिया था कि बहू दा रोल या पत्नी दा रोल या माँ दा रोल जड़े से बड़े अच्छे तरीके ने महिला जड़े से निभा दी है। पर महिला तो अपना रोल अच्छे तरीके ने निभा दी है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है या अपना अपना व्यवहार है, पर से महिला अपना रोल तो ठीक है, माँ का रोल है, बच्चे की परवरिश किस तरीके ने करनी है, चाहे पढ़ाई का ध्यान है, चाहे कोई भी काम है से किस तरीके ने करना है से एक महिला जो पता है। पर महिला दे क्या अधिकार हैं, समानता दा अधिकार, बाकी जेड़ा घरे दे फैसले न या कोई भी, क्योंकि परिवार है, परिवार दा माहौल, संयुक्त परिवार कहे बोल दे, संयुक्त परिवार दा जेड़ा माहौल है सिख दे आंदा प्यार भावना एक दूए ते मिलदी, घरे दा कोई भी काम है से मिली जुली करी करना, कहते इस कम्मे करने च अलग ही अंदाज होंदा। सुननी है दोनों साइड दी सुना, पर सही है कि अच्छा हाँ किस तरीके ने करा देना या बुरा किस तरीके ने करा देना। आज कने दौर की गल करिए सिर्फ बोलने की जरूरत होंगी कने हाँ कोई ना कोई जड़ा कदम है से उठाई लेंदे, चाहे से सही है चाहे से गलत है। ना बच्चों की गल करिए बच्चे भी गलत कदम उठाने दे चक्कर च बड़ा ज़्यादा जड़े से हर दिन हाँ कोई ना कोई न्यूज़ सुन देन। महिला की गल करिए या पुरुष की गल करिए या कोई भी है, कोई ना कोई न्यूज़ हाँ हमेशा सुनते रहते हैं, थोड़ा जहा दुख भी लगता है, थोड़ा जहा सोच विचार करके दिखा कि इस गल का कोई ना कोई सल्यूशन जड़ा है से ज़रूर निकलना है। तो थोड़ा जहा बच्चे न बच्चे जो अपने पेरेंट्स साइड सोचना चाहिए, या महिला है, महिला अपने पीछे दिखती है या अपने बच्चे न या माता पिता न या कोई भी है फैमिली दस्ते से कोई भी है, क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी का सफ़र जड़ा से एंजॉय करना ज़रूरी है। सभी हंसी खुशियाँ ने क्योंकि चेहरे पर स्माइल जड़ा से रहती है तो कुछ ना कुछ यहाँ का जड़ा जीवन है से बड़ा सरल बनी आता है। कहीं हर कोई मेहनत करा दे, मेहनत करी करी अपने काम हासिल करा देन, तो ज़रूर मेहनत अपनी जारी रखा क्योंकि मेहनत बिना तो कुछ भी नहीं है। इसी कन्ने अगले जड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर देना गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च, ठीक ठाक है न?
1: हाँ लगे बोलना हूँ तो हाँ खने आ रहे थे
0: जी खने आ रहे थे बोला थे।
1: हाँ जी तो हाँ साझा गए हाँ तो हम गुंजने चुपाई थे ना
0: जी जी
1: ये पूछा मत
0: जी जी
1: पाड़ियाँ गाने तो ठीक आने आने ना
0: जी जी
1: अपन जरा तोड़िया गल्ला जी अन्ना
0: जी
1: ओ हाँ खुश करी दिया रिया
0: जी धन्यवाद जी, तुहां दा इतना ज्यादा तुहां प्यार दिते।
1: गाने तो चलो तुहां हाँ सुनाने नी गलन जे तुम सुनाने ना
0: जी जी
1: अपने तुहाड़े जेड़े प्यार भावना जी है ना
0: जी जी
1: ओ हाँ खुश करी दिया जी
0: जी धन्यवाद जी, तुहां दा इतना ज्यादा तुहां प्यार दिते।
1: मैं गई दुकाना
0: जी
1: कहने उत्थ लगे गाने
0: जी जी
1: कहने मैं बोलिया ए कुछ लगे गाने गुंजने से धर्मशाले
0: जी जी
1: ते दुए हे बोले दे ना हुन मिजो बोली जा रहा
0: जी। कितने की बजे गए थे तो हम दुकान ना
1: नेतने की क्या ना आदा
0: जी जी
1: सर बोला कर नगर मैं बोलिया मिमी आए कर फोन ने लिए डलाई
0: जी जी
1: नहीं लगी तेरे सुनना
0: जी।
1: अच्छा जी सुने मैं समझ जाते फिर फोन में रखने तो दिल नहीं करे
0: जी जी
1: करे बच्चा ले तो एक ले देता हाँ दीदी एक तो बोलिया हमने भी सुनना बोलिया
0: जी।
1: अच्छा जी तो हाँ तो मेरे हजार रुपया खर्चा एक का होना
0: जी जी
1: ना फिर एफएम खरीदिया
0: जी। अच्छा एफएम खरीदिया
1: तो हाँ तो हाँ हाँ खुश करीते हो ना
0: जी। चलो उन्हें
1: और नस्टेशन लाने दिल नहीं करा था
0: जी। हमारे से तो यही बड़ी खुशी है कि तो हाँ रेडियो गुंजन धर्मशाला जो इतना ज्यादा प्यार दिन दे ना जी।
1: तो हाँ साइड में मैडम है ना इतना खुश करीता तो हाँ पूछा मैं तो गाना तो मैं नहीं दसना ना कहियो जे तो हाँ अपनी मर्जी ने वधिया वधिया सुनाई दे आ जे तुहाड़ियां गल्लां क्या रे दियां तो गाना क्या दसना
0: जी। अच्छा गल्ला ही प्यारी
1: हां जी
0: जी
1: ठीक मैडम ठीक ठीक
0: जी। तो तुम अपना नाम नहीं दसे जी।
1: हां जी
0: नाम नहीं दसे तो हम अपना
1: नाम दसना तो हमारे घर चले होना था फिर
0: जी नहीं आंदे हां घर
1: जी ना ना मैं मतलब कुछ तो बोला जी खातरी रोड है ना
0: जी जी
1: ना मेरा गोमती
0: जी।
1: हां जी तो हाँ याद रखनी हो ना
0: जी।
1: तो हाँ दुम्मे त्रिया रोज मैं फोन कर दिया रहने
0: जी। जरूर जी यहाँ तो हाजिर हैं तो हवा से
1: जी।
0: तो हाँ

0: चार बजे वे लाए जा रही कि 11 बजे है बंद करा दी मैं क्या बंद क्या करने फिर दूसरा टाइम हो गया 1 बजे का
1: जी
0: ठीक ठीक मैडम
1: जी धन्यवाद जी धन्यवाद
0: बड़ा धन्यवाद थैंक यू मैडम
1: जी ये तो हां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि करने श्रोताओं समय जेड़ा से अपनी रफ्तार लेकर चल रहा है कन्या हम भी समय की रफ्तार कन्नै चलना है कन्नै फरमाइशा भी ज्यादा न कन्नै जेड़ा श्रोता न सभी जरूर कॉल पर कॉल करा देना अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्नै भी कर देना गल बात हेलो हेलो नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
2: बढ़िया बढ़िया मैडम जी तुसा सुना ठीक है ना
1: जी हां भी ठीक ठाक हैं जी तोहा कुथो ते बोला दे
2: पापा ने मारे मैं बोला दा तुसे धर्म शाला स्को ते बोला दा मैं
1: जी अच्छा धर्मशाला स्को ते बोला दे
2: जी जी जी बड़े दिना दा तू सारा प्रोग्राम सुनदे ना सी कने बड़ा मजा आंदा बहुत आनंद लेंदे जी
1: जी धन्यवाद जी तोहांदा सुनने वास्ते गाने जी जी जी तो स्को दा मौसम कदे है
2: सुको मौसम ठीक है थोड़ा थोड़ी बरखा लगी थी हुन रुकी गई हुन
1: जी जी
2: अच्छा मैं भी एक गाना जी फरमाइश देना चाहंदा जी
1: जी जी जरूर जी
2: जी जी हां जी हां जी ए गाने दे बोल हुने आयो चंबा हरिया भरिया जी
1: जी चंबा ता हरिया भरिया ही है ना जी
2: जी जी जी ये गाना सुनना चाहंदे जी
1: जी जरूर जी समय जेड़ा से हाल थोड़ा दे है पर जरूर आ कोशिश करगे कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਨਾ ਜੀ
2: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
1: ਜੀ ਜੁਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ
2: ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਬੋਲਾ ਸਕੋ ਦੇ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ
2: ਠੀਕ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀ ਠੀਕ
1: ਹੈ ਤਸ਼ੋ ਤੋਂ ਆਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਓਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ तो सारे जो ही पता है कि ये कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है कि नहीं इसका जोड़ा समय है से तो तक रहा है 2-3 बजे तक तो श्रोता इंतजार करा दे होने कि फरमाइशा जोड़ा न से तिना तक नहीं पुजियां न तो जरूर अगली जोड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना

हाँ बोला देना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने तशो तो थोड़ा दिया कार्यक्रम दे सफर जो और अगे बढ़ा देना कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना।

दर्शो तुम तो सारे सुनिया ही प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश सही फरमाइश के बाद अगली जेड़ा फरमाइश है से तुम तक पहुँचा देना।

श्रोता तो सारे ही सुनिया है कि ते फरमाइश थोड़ी दी तो वास्ते जेड़ा माफी है से जरूर मंगते ना, क्योंकि समय जेड़ा है से तो तक रहंदा है 2 ते 3 बजे तक, तो फरमाइशां दे जेड़ा दो बोल तो तक पहुँचाए न तने इसी करना तो सारे अपनी रेडियो दो शशि जी दे अनुमति, क्योंकि समय जेड़ा है से अहां जो बोला था कि हूँ अनुमति जेड़ा है से तो ले लिया, तो अनुमति लैंदे न हमेशा खुश रहा।

0: पानी में भैया
1: भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: अरे कहाँ से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक

राखी का असली मकसद सिर्फ एक कलाई तक सीमित रहना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे।
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। तो मैंने गंदी सी ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
9: ओह नो, यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन
0: पाएगी। कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
10: काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: पानी में भैया
1: से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: कहां से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा

बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता,

0: तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: अच्छा मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी सी ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
3: ओह नो,
5: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
4: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
5: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
6: काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर हेवेरी गुंजन धर्मशाला हो रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर हो चुका कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल ने श्रोता तुंदे? उम्मीद कर लूँ तुंदे हाल चाल ठीक मुने, तो सब खुश मुने, तंदुरुस्त मुने और अपने घर के न सो बिल्कुल मस्त मुने हिन। हम सचिन कपूर है श्रोता हूँ कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ है और कार्यक्रम मंच बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा। तो सब श्रोता सुखी जुड़ी सकते हैं, अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं, अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो सुखी साझा कर सकते हैं। एक अल्लाह का खास ख्याल रही है कि जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर हुआ जानकारी किया। सो तुसु सभी सोगी सभी होगी किया सो दसने लाइक वो है ना जी। तो बहुत सारी जानकारी हिन जो आसू तुस होगी शेयर करनी हिन साझा करनी हिन और अन्य और भी जानकारी हिन जो तुस होगी शेयर करनी साझा करनी हिन। बहरहाल तो सब जुड़ी सकते हिन 708-8-8-709 पर कॉल करे करे। आइए श्रोतों आगाज़ करी लेंदे हिन कार्यक्रम रहा और आगाज तो बाद फिर तुम्हारी सभी फरमाइश है वह जरूर पूरी कर ले और कुछ एक गल भी तुसु किया है जरूर किया सो साझा कर ले है ना जी। तो नंबर अक मुके गोएं गोएं फिर बली नो जी 708-8-709 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो नहीं सकते हैं। बहरहाल आगाज कर दें छोटों कार्यक्रम रहा इस प्यावे दे भजना होगी बनी रिया जुड़ी रिया आरजे सचिन कपूर सोगी।

0: शोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर हवेली गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगैन सो चल रही हैं ता बड़ा बड़ा स्वागत है मोटा मोटा स्वागत है एक मौके फिर ये सभी होने वाले रहा। आइए शोतो कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदे हैं और कार्यक्रम मंच तो सब श्रोता सो के जरूर जुड़ सकते हैं 7081 8 8 7 0 9 8 पर इंदे एक श्रोता सो के कनेक्ट भूए हिन श्रोतों पुछ दिन कुंड बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू करते हिन और इसी सोगे श्रोतों है अन्य जानकारी भी तू सोगे कि सो जरूर साझा कर ले श्रोतों। तो ऐसा बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सोगे और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा के न सो हूँ करते हिन है ना जी इंदे श्रोतागण असोगे कनेक्टेड हिन और उस दिन कौन बोलूं दे और कड़ी थों बोलूं दे। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते कौन बोलूं दे और कड़ी थों बोलूं दे जी।
1: मैं ओंकार चंद बोल रहा हूं जी।
0: ओंकार चंद जी कड़ी बोलूं दे।
1: मैं सिद्ध राशि बोल रहा जी।
0: अच्छा ठीक ठाक ना जी।
1: हां जी ठीक ठाक जी। तो सुना जी।
0: बढ़िया जी बढ़िया है भी ठीक ना।
1: अच्छा बारिश लगी हो?
0: भोला
1: भाला जी कजे मेरा लुटिया।
0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हां जी हां जी
1: कन्ना राणे का गाना रण चराए जानी मेरी ये
0: मज्जर एक बारी अग मुके फिरे दस ले जी कौन देने गीत
1: लैंड चराए जानी मेरी एक नाराने का गाना।
0: ठीक है जी जरूर
1: पोला पाला वो पोला पाला दिल का जो लुटिया
0: पोला पाला दिल वो मेरा का जो लुटिया
1: हाँ जी हाँ जी नाराने का गाना
0: हाँ जी हाँ जी ठीक है जी जरूर पूरा कर ले।
1: ठीक है जी ठीक है जी
0: ठीक है जी धन्यवाद।
1: ठीक है जी
0: चलिए श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन सो चल रही हैं और

0: श्रोता जो कनेक्ट कर रहे हैं, श्रोता नमस्ते जी।
1: नमस्ते महाराज जी।
0: जी महाराज नमस्ते नमस्ते, ठीक ठाक ना?
1: दया मेरा उस माल करी।
0: अच्छा मेर तो हमेशा रहना चाहिए दया।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: जी हरदेव जी, सुख शांति है परिवार, सुख शांति मन जा तो है, ठीक ठाक ना?
1: जी महाराज जी।
0: और कर करे लुगरेन?
1: बस कर लगना, बस बाहर खड़ू दे तो प्रोग्राम होने के लिए चला भी तो रेडियो में।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी।
0: हरदेव जी पहले तो ये दसा कि कौन दिन गीत होना तुसु?
1: मुझे सुनने बुंकू दा होना जी।
0: सुने बुंकूरा हरदेव जी, तो कुछ ना लग रहे थी ये दसना ही शायद कि पार जो फोन डिस्कनेक्ट हो चुका तो कोई एक कृष्ण भगवान रे तो है ना कोई एक कहानी की ऐसो दसना लगे थी ऐसो।
1: हाँ लगी दसना, फिर मैं मैंने तो अपने आप ही मेरे बच्चू क्या हुआ मैं लोग फिर मैं फोन ना करूँ फिर मैं।
0: अच्छा
1: अब अगली बारी कर लाऊं।
0: अच्छा अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद जुड़ने वास्ते।
1: ठीक है महाराज जी।
0: जी महाराज नमस्ते।
1: नमस्कार।
0: शोधों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन, सो बिल्कुल लाइव चल रही थी वेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच, इन अगले श्रोता भी असू की बिल्कुल कनेक्टेड हिन और जरूर पूछ दिन की कुंड बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू कर देन। नमस्ते जी।
2: नमस्ते भाई जी, क्या हाल
0: है? नमस्ते जी। नमस्ते है, ठीक ने जी? तो बल्ला तो ठीक ठाक ना?
2: बढ़िया तू बल्ला?
0: बढ़िया जी। कुंड बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन? अच्छा जी, जनाब कुंडी ने गीत सुनना पसंद कर ले? चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो आगे बढ़ेंदे हिन और फरमाइश दौर गया आसो बिल्कुल शुरू करी देना पूरा करना, बने रहे जुड़े रहे रेडी गुंजन रेगुन सो के।

0: শত এফ এম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর ভেরি গুঞ্জন ধারমশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন কর রহা আর কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্পা গেন স্বতন্ত্র রেডিও সেট পর এস সময় বিলকুল লাইভ চল রই রেডি গুঞ্জন ধারমশালা মঞ্চ জানকারী রা পিটারা কি সত সো হ্যাঁ বাখুবি তুসু অগো রখো কর দিন আর আই আগলি জানকারী বহ বেহদ খাস জানকারী কি সো তুসু গে হ্যাঁ শেয়ার কর দেন সাঝা কর দিন সত মণি মহেশ যাত্রা আস্থো কে সত সো চুর বজে থো সুরু छोरे हा जी बिल्कुल और 4 सितंबर जो दसना चाहता तू सभी जो कि शाही स्नान रा समय की है सो 4 सितंबर जो रखूरा पूरी जानकारी की है सो साझा करते हैं इनसो तुम मणिमहेश यात्रा बुधवार जो भेगा 4 बजे शुरू भुजगाने हा सो तुम आज यानी कि 4 बजे की सो शुरू भुजग छोरे हा यात्रा 20 सितंबर तक की है सो चलने हैं यात्रा रे दौरान 28 अगस्त जो रक्षाबंधन स्नान 4 सितंबर जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी रा छोटा शाही स्नान और 18 सितंबर जो कि है सो वादाष्टमी व बड़ा शाही स्नान किया सो तय हुआ है सो तो 84 मंदिर भरमौर रे पुजारी पंडित छज्जू राम शर्मा ये दसवा सो तो कि जन्माष्टमी स्नान रा शुभ मुहूर्त 23 सितंबर वीरवार रात 2 बजे करी 26 मिनट थों शुरू भुचगाना हाँ शुक्रवार पूरा दिन के असो ब्रह्म मुहूर्त रहना आशो तो और 12 बजे करे 14 मिनट तक के असो स्नान तो है कर सकते हैं राधा अष्टमी रे पर्व 18 सितंबर दोपहर 1 बजे थो शुरू भुचगाना हाँ 19 सितंबर संजा 3 बजे करे 28 मिनट तक के असो रहना है आशो तो श्रद्धालु री सुरक्षा माँ 1000 जवान के असो तैनात करो हर्षो तो हटसर थो मणिमहेश झील तक 13 किलोमीटर थो अधिक रा पैदल सफर हा जिनके है सब बखूबी जान दिन धन छो बचगो गोरीकुंड बचगो शिवकुंड बचगो सो तो इड़ी इड़ी ठहरने वे टेंट री व्यवस्था की असो रहने हाँ अक बिस्तर रा किराया की असो तो सो 250 थो लेकर 350 रुपये तक रहना है झील समुंदर तल थो करीब 13,000 फीट री ऊंचाई पर है सो तो प्रशासन रे अनुसार 7 बजे थो बाद के असो श्रद्धालु जो हर सरतों हागू के असो नागाना दीना हा जबकि वाती जो वाती वे समय की असो तो सो 7 बजे थो लेकर भेगा 4 बजे तक के असो ये यात्रा बंद रहनी हा और हर सरतों हागू तो सोना गाना दीना हा सो तो एक हाँ जानकारी तो है सब भी होने इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच और फेसबुक रे लाइव में इन द वेड़ी गुंजन रे पेज रे माध्यम तो और ना चीज सचिन कपूर इस जानकारी जो कि असो दूसो तक साझा करो करता दसो करता हा इन दे श्रोता गण भी असो के कनेक्टेड हैं पुस दिन कौन बोलूं देन और कड़ी तो बोलूं देन नमस्ते जी
1: नमस्ते हेलो सचिन जी
0: हां जी नमस्ते जी नमस्ते
1: ओ ठीक ठाक कि
0: ने बहुत बढ़िया जी तो दसो तो ठीक ठाक ने
1: बढ़िया जी बढ़िया
0: जी कौन बोलूं देन और कड़ी तो बोलूं देन
1: ਬਾਰਾਂ ਕਿਲੂ ਬਲਵਲਾ ਕਰਤਾਰ
0: ਅੱਛਾ ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਕਰ ਕਰ ਲੁਗਰਨ
1: ਬਾਸ ਜੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਲੁਗਰਿਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬਰਕ ਲੁਗਰਿਆ
0: ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੰਡੀ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਹੈ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
0: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਸੀਨ ਵਾਦੀ ਮੰਚ ਰਿਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾ ਇੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਚ ਛਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल
1: कभी धूप भी कटाईंगा कभी
0: जी बिल्कुल बिल्कुल जी कुंडन गीत होना पसंद कर ले तो है
1: मुक्ति मेरे थी कुंडली काफी
0: क्या बात है थोड़ा गुनगुनाई करी दस दे यार सुबह फिरे सियाने जहन गीत गंदन ता ਤੇਰੇ ਸੁਰ ਔਰ ਤਾਲ ਦਾ ਕੁਛ ਅਨੋਖਾ ਮਜ਼ਾ ਬੁੰਦਾ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ
0: ਬਾਤ ਹੈ ਚਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ
1: धन्यवाद सर
0: धन्यवाद जी स्वतंत्र सब बन रहे समय एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया और आऊँ सचिन कपूर है मणिमेश यात्रा वाले बारे तो सूरदसी दर्शतों 4 सितंबर जो शाही स्नान है 18 जो राधा अष्टमी है बड़ा स्नान है शाही मोटा स्नान है श्रोतों श्रद्धालु भी सुरक्षा व्यवस्था के सो 1000 जवान के न सो तैनात करे हिन्न हिमाचल सरकार है। बहरहाल कार्यक्रम में जानकारी रहा पिटा रहे चलते रहे बने रहे जुड़े रहे इस नाचीस सोगी सचिन कपूर सोगी और रेडियो गुंजन रही इसी गूंज सोगी। लेकिन चलते हैं छोटो तू सभी जो इस प्यारे दे भजनारी किनारी बने रहे जुड़े रहे आसो सोगी छोटो

शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रोर कार्यक्रम लेकर आऊँ सचिन कपूर बिल्कुल हाजिर हाँ तुंदे वेडियो सेट मार्क मौके फिर शो तो ता क्या हाल चाल ने तुंदे ठीक ने उम्मीद करनो हाल चाल बिल्कुल ठीक बुने और खरे बुने कॉल करी सकते 7 0 8 8 8 7 0 नौ अक पर तैये जी हाक मौके फिर किया सो स्वागत है सभी श्रोता रहा सभी होने वाले रहा और जितने भी श्रोता हसुओगी जुड़ रहे हैं हसुओगी बन रहे हैं त्यारा सभी रहा तहे दिल तो स्वागत करना थोड़ा करे सिग्नल रही दिक्कत की सो जरूरी छू कर दे हाँ आज श्रोता इन द फेसबुक वे लाइव रे माध्यम तो भी आए हेरी सकदन की थोड़ी करी सिग्नल रे दिक्कत की है सो इच्छू कर दिया। बहरहाल कार्यक्रम जो हगू बढ़ श्रोता हूँ और अगली जानकारी होगी अपने श्रोता जो कि सो रूबरू कर बंदे हिन पुलिस में भूणी 1000 होर भर्ती श्रोता हूँ जी बिल्कुल तो जितने भी युवा ने इस समय जो कार्यक्रम जो होनो कर दे सो जरूर जी तो है सब तैयारी के सो जरूर करा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है कि सो मंगलवार जो विधानसभा में इनकी एक ही सो विधानसभा में बल्लो आके पुलिस विभाग में 1300 तो ज़्यादा पद कॉन्स्टेबल रहे 1300 तो ज़्यादा कॉन्स्टेबल रहे जो पद ने सो भरी चुक रहे हैं और 1000 तो ज़्यादा पद अली और क्या ने सो भरी ने हैं जी बिल्कुल। पूर्व सरकार रे दौरान पूर्व सरकार रे दौरान किया पुलिस में भर्ती भुछूरी ने लेकिन पेपर लीक किया न सो भुछ छूरे ने तीन ये बल्लो छोता हूँ कि पुलिस में भर्ती इसलिए भी ज़्यादा असू करनी पे कर दिन कजो कि इंदा जो युवा भारत रहा सो सरकार रे अग्निवीरा री स्कीम जो कि असो पसंद ना करो करता है। मुख्यमंत्री व ये बलना हा श्रोता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन रहता है तीन और भी कदम क्या है सो नई नौकरी जो लेकर के ना सो चुके हैं ए इन द हिमाचल प्रदेश वे मुख्यमंत्री रे जो मंगलवार जो विधानसभा में तीन ये बोल रहा सो है तुसु तक गल पहुँचाई थी श्रोता जो इन दायित्व जो इन कर्तव्य है। बहरहाल तो सब आर जे सचिन कपूर सो की बन रहे हैं और बिल्कुल लाइव कार्यक्रम इस समय हुनु कर देन खास जानकारी तुसो गी सांचा सु कर दे रहना हा। बहरहाल लेकर ही चलते हैं श्रोता तू सब भी जो इस प्यारे दे गीतारी किनारी बनी रही जुड़ी रही आसू सो गी श्रोता

0: শত এফ এম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর ভেরি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন গুড রে কার্যক্রম আর যে সচিন কাপুর সোগে হুন কর দেন জনাব ইন্দি আপনি গপ্পা আপনি আপনি রেডিও সেটমা ভেরি গুঞ্জন ধর্মশালা মঞ্চ তা শত বিলকুল জুড়ি সকদেন তো হ্যাঁ 708-8-709 পর নম্বর এক মোকে ফিরে আউ শেয়ার করনো হ্যাঁ 708-8-709 अकबर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं। भाई साहब चीनी और सोना के सोना खरीदन ताई घरे अब ये बोलना चाहूँ कजो के 18% कारखाने थो निकलने पर भी भाव 55 रुपये किलो इच्छु करदा लेकिन बल्लू गर्दन की हल्ली और बुने सस्ती लेकिन फिलहाल जो रेट हैं जनाब ये काफ़ी ज़्यादा हैं। इंदे श्रोता जी हाँ इन श्रोता सोगी कनेक्टेड हैं बिल्कुल पूछ लेंदेन कौन बलूंदेन और कड़ी थो बलूंदेन और चीनी रे दाम और सोने रे दाम कौन करिए पूरा तो सब बन रहे इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया और इन श्रोतागण असोगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते
1: नमस्ते जी।
0: हाँ जी जी कौन बोल रहे और कड़ी थों बोल रहे
1: मैं ओंकारचंद बोल रहा हूँ मेरा गाना नहीं है यार फरमाइस
0: ओंकारचंद जी फरमाइश तुम दी जरूर पूरे बुने है ना जी
1: आज ठीक है ठीक है ठीक है जी।
0: हाँ जी करनाल रवि जी रागी दस सोना तो है भोले
1: हाँ जी भोला बाला दिल का जो लुटिया
0: भोला बाला दिल का जो लुटिया है ना जी
1: हाँ जी हाँ जी ठीक है जी
0: जरूर बुने जी जरूर सबर करा
1: ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद जी
0: धन्यवाद जी। चलिए जी श्रोतों तो ऐसा बन रहे समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन सो हूँ करते हैं। तो चलिए चीनी वे दाम 18% क्या न सो घटने हैं कारखाने तो निकलने पर भाव 55 रुपये किलो पर इच्छु कर दिया हाँ तो सो पूरी जानकारी के सो साझा करता हाँ श्रोतों वैसे कि सो चीनी रे दाम एकदम बढ़ गया है ना पहले 50 रुपये 45, 50, 55, 60, 70 रुपये किलो के सो पूछ गए सोने रे और चीनी रे दाम तो बढ़ गए कि जी पूछा मत तो है ना तो एक आम इंसान वास्ते जो आम परिवार थो इंदा जो मिडिल क्लास फैमिली वे अह तो है मनो हिन तिंजा वास्ते तो 70 रुपये किलो भी मत ही बंदे है ना वही बलने तो कि 70 रुपये तो आ रहा 70 रुपये गुण देने है 100 रुपये मोमो खा लेंदे बलने माँ और करने माँ बड़ा अंतर बनता है शो तो सरकारी और थो चीनी रे आयात जो अनुमति देने पर किया सो दाम 18% तक गिरी करीब 55 रुपये प्रति किलो पर चले आए हैं शो तो लेकिन हल्ले भी कई दुकानदार के ना सो 55 ना बेचू करते बुने 60-70 की सो चल रही बुने है ना जी तो एक या 55 रुपये प्रति किलो के आए कारखाने थो निकलने थो बाद किया सो रेव कर दे हर्षो तो पिछले हफ्ते चीनी वे भाव के सो लगभग कोई 70 रुपये बेचू कर दे तो कोई 60 रुपये है ना अपने अपने हिसाब हो गए किलोग्राम रे हिसाब हो गया सो बेचू कर देती है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ये दसो हर्षो तो कि सरकार के सो चीनी की कीमत जो कि सो नियंत्रित करने वास्ते किया सो कई अहम कदम किया सो चुके हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के सो 10 लाख टन कच्चे चीनी रे आयात री अनुमति की सो देती है। इतों अलावा बड़े खरीददारा पर स्टॉक लिमिट लागू करी देता है और राज्य जो कि सो जोखिम राज्य जो कि सो जमाखोरी रोकने वे निर्देश किया सो दी देते हैं इन शतों इन या फैसले थो बाद किया सो मील स्तर पर कीमता में के सो गिरावट के सो शुरू भुचिकाने हाँ आमतौर पर शोतों एक्स मील वेट और थोक बाजार री कीमता में 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम रा अंतर के सो बुंदा हा तटीय शोतों एक्स मील और खुदरा बाजार री दरा री 7-8 रुपये प्रति किलो रा अंतर किया सो रंदा हा शोतों ता फिलहाल सरकार चीनी व्यापारी और डीलरा पर स्टॉक रखने री सीमा के सो लागू करी देती है। नए नियम रे तहत महीने में 10 मिलिट्री टन 10, हाँ मिलिट्री 10 मीटरी टन तो अधिक चीनी रा कारोबार करने वाले डीलर 15 दिन तो अधिक री खपत रा स्टॉक जमा करना जमा किया सोना खरी सकते हैं इन तो। मतलब कुल मिलाई करी जो इस खबर रा सार निकलू करते सो है कि भाई 18% घटिया चीनी रे दाम 18% के अंशों घटू कर देन, कारखाने तो निकलने पर भाव 55 रुपये किलो पर किया सो इच्छू कर देन और अली होर सस्ती किया सो बोने या चीनी। फिलहाल ये ऐसा खबर रह किया सो तात्पर्य है आशो तो। बाकी तो इन बड़ा फैक्ट में किया सो दूसरा बड़ा मतलब गहराई में गिची करी दूसरा खबर पूरी, लेकिन जो मोटा मोटा आसू मनु समझना आसू तो सू समझना सो यही समझना हा। ता जानकारी ये चलते रहनी इन शो तो जानकारी रा पिटारा ये खोलते रहना हा। लेकिन चलते हैं तू सभी जो शो तो कजो की तू सब बंडो ने समय आर जे सचिन कपूर सो की और है आगाज भी भोले शंकर जी रे गीत हो के करो तू शो तो त्यारे गुणगान हो के करो तू कजो की आज थाऊ के आ सो शुरू बुच्छुरी मणिमहेश यात्रा ता मो बेगाना भोले रे मणिमहेश न जाने कहने हुकुम इंदा और कहने के छिंदा सोता भगवान न जो पता कि मेरे भी कर्म खरे इनकी नहीं है ना। चलो अपनी और तो आए कोशिश कर दे रहे इन शोधों के इंदे कर्म के अंशों खरे निकलने, बाकी धन दौलत पैसा के सब कुछ ही ठीक रहेगा नहीं शोतों जाने इंसान गंदा था सिर्फ और सिर्फ सेरे कर्म के नशों से भी हो गए गंदे ने तीन ये जो खरा कमूरा बुंदा खरा करूरा बुंदा कसी हो गए खरा बिहेव रखूरा बुंदा खरा नेचर रखूरा बुंदा सोई सो गए गंदा और कर्म में क्या नशो सो गए गंदा और सोई हगूरा रास्ता गया सो तय कर दे इन शोतों। बहरहाल लेकिन चलते इन शोतों को जो कि सब चली गया था सुविधा जरूर गया।

अख नोए भग के सोहोर मोड़े हा। सो ता मोड़े शतों की पिछला सब तो है छड़ी दीन और नोए सीरत हों किया सो अपनी जिंदगी जो शुरू करी दीन। भगवान ना जरूर लेंदे रहन जो कि नज़र कसीरी भी लग सकती है। इन्या शब्द था सचिन कपूर लेनो इजाजत। नमस्ते धर्मशाला।

0: पानी में भैया
1: भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: अरे कहाँ से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में फंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में फंस नहीं स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें

बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए इसका पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। मैंने गंदी सी ऐसे करके शक्ल बनाई
9: है। इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उसे रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

0: पानी में भैया।
1: बची खुची भैंस भी गई पानी।
2: ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया।
3: बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
3: अरे कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं नमस्कार। जी संध्याकालीन सभा हमारी हो गई है शुरू। आप सभी हैं 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो बज चुके हैं 6 और 6 से वैसे ज़्यादा हो गया है समय, 6:05 हो चुके हैं और हम भी पहुंच गए हैं अपने प्यारे दोस्त माइक के पास। करने आप सभी से आज की इस सभा की बातचीत और सुनवाने आपको प्यारे प्यारे से गीत। तो आपको पता ही है 6 से 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है लाइव, और इस कार्यक्रम में आज के लिए आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

तो अब ना तो हम इसे वीकेंड कह सकते हैं ना ही शुरुआत कह सकते हैं, तो बीच का ये दिवस होता है, ये बुधवार और बृहस्पतिवार जो दोनों दिन होते हैं ना, ये दोनों जो हैं वो वीक के मिड डेज होते हैं और इन डेज पर हम थोड़ा सा एग्जॉस्ट ज़रूर हुए रहते हैं कि हमें लगता है कि भाई अब पहले तो होता है ना कि सोमवार को हमें लगता है कि ठीक है कि हमने एनर्जी गेन कर ली है, संडे को छुट्टी होती है तो उसकी वजह से, और फिर पूरी फ्रेश तरीके से हम जो हैं वो अपने अपने कामों पर निकलते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन, फिर उससे अगले दिन, जैसे कि आज का दिन, और आप लोग एग्जॉस्ट होकर अपने अपने घरों में पहुंच ही गए होंगे। अब कई लोगों के लिए तो आज का दिन बहुत अच्छा गया होगा ना, जैसे सबका अपना अपना ये होता है ना, तो कईयों के बॉस ने उनकी बड़ी तारीफ़ की होगी, कईयों को थोड़ी सी मायूसी मिली होगी अपने अपने वर्क प्लेस पे, लेकिन जो भी हो आखिरकार कहते हैं ना, शाम को लौट के बुद्धू घर को तो आए। परंतु अगर जो भी कुछ हुआ हो, चाहे आपको मायूसी मिली या आप खुश हुए हों, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि सुबह तो सुबह जो लाइव हम करते हैं वो तो एनर्जेटिक हो ही, लेकिन हाँ शाम का वक्त भी आपका पूरी फुल एनर्जी से भरा रहे। तो इसीलिए हम आपके साथ बातचीत करने के साथ साथ में लेकर आते हैं खूबसूरत खूबसूरत से नगमे भी, जिनको ढूंढने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से कोई भी गीत उठाया और आप लोगों को यहाँ पर परोस दिया, ढूंढना पड़ता है यानी चुनना पड़ता है। और आज के पिटारे में हमारे पास क्या क्या है और बातें क्या क्या हैं, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर आप तक एक एक करके ये परतें खुलती जाएंगी। परंतु हाँ, आने से पहले यानी कि सुबह सुबह ही मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, उस पोस्ट को देखा होगा अगर आप लोगों ने तो आप समझ तो गए ही होंगे कि आज कार्यक्रम में मेन जो बात है वो हम किस पर करने वाले हैं।

वैसे तो आपको पता है कि नेत्रदान पखवाड़ा भी चल रहा है, जो कि 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक है, और आज इंटरनेशनल महिला समानता दिवस भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करूं तो आज अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे यानी कुत्ता दिवस भी है, और हमारे देश में आज सेलिब्रेट किया जा रहा है ईद ए मिलाद और केरल में ओणम का त्यौहार। और ई श्रम पोर्टल को आज 5 साल हो गए हैं, तो इतनी सारी जानकारियाँ काफ़ी है ना आप लोगों के लिए। बस इन्हीं सब पर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ और ख़ास भी है आज के कार्यक्रम में। तो क्या ख़ास है, चलिए अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो इस गीत से अंदाज़ा लगा लीजिए।

0: नैया आ रे कपड़ा के सब रस ले आ रे बिजड़े वाली मुनिया कपड़ा के सब रस ले
1: तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम मेन किस विषय पर बात करने वाले हैं।

0: और तीसरी कसम फिल्म का ये गीत आप मन्नाडे और साथियों की आवाज़ों में सुन रहे हैं। और ये गीत बहुत पुराना है, बहुत पुरानी फिल्म का, और आज हम बात भी कुछ पुराने समय की ही करेंगे आप सभी से। तो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो दोस्तों, लेते हैं हम कार्यक्रम में आज का विचार। जो बात करेंगे विचार भी कुछ वैसा ही हो तो अच्छा रहेगा ना। बीते हुए कल की यादें हमारे दिल की वो पुरानी किताब हैं जिन्हें हम जब भी खोलते हैं चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में थोड़ा सा बचपन लौट आता है। सच तो ये है कि दिन बीत जाते हैं लेकिन खूबसूरत यादें हमेशा के लिए हमारी धाती यानी कि धरोहर बन जाती हैं। तो दोस्तों, है ना, पुराने दिन इस बात की गवाही देते हैं कि वक्त चाहे जैसा भी हो बदलता तो ज़रूर है। और आज कहाँ रहे वो दिन, कहाँ हम उन्हें याद भी नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ही याद करते हैं, पर हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम आपको यहाँ से कम याद करवाएं उन दिनों की। इसलिए बीते कल की अच्छी बातों को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि जो कल सिर्फ एक याद था वो आज हमारे तजुर्बे यानी अनुभव की सबसे बड़ी नींव है। तो समझ में आ गया ना आपको आज का विचार। और इसके साथ ये भी बता देती हूँ आपको कि हम अपने फेसबुक पेज से इस वक्त लाइव भी हैं, आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई मैसेज करना चाहें तो आपके पास हमारा फ़ोन नंबर है 7018117091। तो इस नंबर पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट्स भी पढ़ेंगे, मैसेजेस का भी इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइएगा और उसके साथ ही हम आपके नाम के साथ आपका मैसेज यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे कुछ ही देर में मैं जो बात करने वाली हूँ ना उससे आप सभी लोग रिलेट करेंगे ज़रूर, और आपके मन में भी होगा ज़रूर कि हम भी कुछ बात अपने मन की भी रख पाते या अपनी कुछ पुरानी यादें साझा कर पाते। तो पाते क्यों, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है ना, इसीलिए तो हमने शुरुआत की है कुछ इस तरह के कार्यक्रम की, मतलब कुछ अलग से अब हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत समय से, तो आप लोगों को भी उसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए। तो चलिए फिर कार्यक्रम में एक और गीत सुन लेते हैं कुछ ऐसे ही पुराने समय का। कुछ गाँव का पुट तो आपको मिलेगा ही आज के गीतों में, जैसा कि मैंने एक बार कार्यक्रम दिया था और मैंने कहा था ना कि एक बार फिर से मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वो था तस्वीरों के साथ, हम गाँव में तस्वीरें ले रहे थे क्योंकि वो डे बस कुछ ऐसा था कि वो फोटोग्राफी डे था। लेकिन आज बात तो गाँव की होगी, पुराने समय की होगी, लेकिन कुछ नए अंदाज में
1: से जुड़े रहे।

जी अंगना में आई बहार भौजी। तो जब नई नवेली दुल्हन बहू बनकर के घर में आती है ना, तो कुछ ऐसा ही हाल होता है सब घर वालों का, और बहुत खुश होते हैं सब। वक्त तो बदलता है धीरे धीरे, और ये हमेशा से माना जाता है कि नई नवेली दुल्हन जब घर में आकर के उस धान के बर्तन को घर में अपने पांव के अंगूठे से इस तरह से अंदर को फेंकती है, तो जो घर है वो धन धान्य से भरा रहता है। तो पुराने समय के ये गीत और वो पुराना समय खुद बहुत कुछ कह देता है अपने आप में ही। हालांकि हमें पता है कि अब लौटना मुमकिन नहीं है, परंतु देखो वक्त का कोई पता नहीं कि वक्त हमें क्या-क्या दिखा जाए। वक्त ने हमें कोरोना काल भी दिखा दिया, जो हम सोच ही नहीं सकते थे कि हमें किसी दिन इतने लंबे समय तक घर में भी बैठना पड़ेगा। तो इसलिए वक्त से हमेशा डर के रहना चाहिए, या फिर यूं कहूं कि वक्त के साथ हमेशा कदम से कदम मिला करके हमें चलना चाहिए। और कामयाब भी हमेशा वही होता है जो वक्त के साथ मिलकर चले। आप लोगों का क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? थोड़ा सा कार्यक्रम सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब कॉल करना है। और आज के कार्यक्रम में खुल करके कीजिएगा अपने मन की बात। वैसे मन की बात कौन करता है ये तो आपको पता ही है ना? लेकिन कोई बात नहीं, ये प्लेटफॉर्म तो ओपन प्लेटफॉर्म है भाई, कोई भी कर सकता है अपनी बात। तो पुराने दिनों को याद करना इसलिए खूबसूरत नहीं है कि वो वक्त बेहतर था। तो फिर आप कहेंगे कि भाई किस लिए खूबसूरत, मतलब किस लिए हमें याद करना चाहिए पुराने दिनों को? इसलिए क्योंकि उस वक्त में हमारे पास सुकून था। तो बीते कल से सीखें जरूर, आज में जिएं जरूर, और आने वाले कल को खूबसूरत यादें बनाएं जरूर। अरे हाँ, मौसम की बात तो हमने आपसे की ही नहीं, मौसम का हालचाल भी बता देते हैं। इस समय धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान बना हुआ है 19 डिग्री सेल्सियस। हल्की हल्की बौछारें हैं, बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाने की उम्मीद है। और दिन भर में कैसा रहा मौसम वो तो आप सभी जानते ही हैं। और अब कह रहे हैं कि जी भाई वो जो कुल्ला और कुल्ली जो बैठते थे ना, वो दोनों उठ गए हैं, और अब धीरे धीरे धीरे मौसम जो है वो सामान्य हो जाएगा, और ये जो बरसातें अभी हो रही हैं, थोड़ी बहुत हो रही हैं, वो भी शायद सितंबर के महीने में बिल्कुल भी नहीं होंगी। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि सितंबर का महीना पूरा सूखा ही निकलने वाला है।

दोस्तों, हम आपके लिए कुछ भी देर नहीं करेंगे, बिल्कुल इस कार्यक्रम को नीरस नहीं होने देंगे। हम अभी एक और गीत आपको सुनवाते हैं।

तो दोस्तों, इसमें नैनों की बात हो रही है कि नैना बेईमान है, लेकिन भाई नैना जैसे भी हैं, अगर नैना हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम मना रहे हैं नेत्रदान पखवाड़ा भी। जो कि 8 सितंबर तक चलेगा और ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाला एक विशेष अभियान है।

तो लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रेरित करना इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य है। देश में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी पुतली की खराबी से होने वाले अंधेपन से पीड़ित लाखों लोगों को नई रोशनी देना भी इसका उद्देश्य है। और नेत्रदान से जुड़े सामाजिक मिथकों, अंधविश्वासों और गलत फहमियों को दूर करना भी इसी पखवाड़े का उद्देश्य है।

अधिनियम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के तहत मानव अंगों या फिर आँखों को खरीदना और बेचना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान भी हो सकता है।

राजा और रंग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। फिरकी वाली से तो आग्रह किया जा रहा था कि कल फिर से आना, अपनी ज़ुबान से मुकर मत जाना क्योंकि तुम्हारे नैना ही बड़े बेईमान हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि नैना जैसे भी हैं, अगर आपके पास नैना है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए इन सभी चीज़ों का कि आपके पास हर एक ऑर्गन जो है वो सही सलामत है। पूछिए उन लोगों से जो कि जूझ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से, लेकिन हम ना फिर भी शिकायतें ही करते रहते हैं। खैर, हम आपसे बात कर रहे थे नेत्रदान पखवाड़े की, तो ये भी बता दें कि जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो सरकारी या मान्यता प्राप्त आई बैंक की टीम मुफ्त में आकर के कॉर्निया यानी आँख की पुतली को निकालती है और इसके लिए परिवार से एक रुपया भी नहीं लिया जाता। और सरकारी अस्पतालों में ज़रूरतमंद मरीजों को ये कॉर्निया पूरी तरह से मुफ्त लगाई जाती है। अगर कोई मरीज किसी प्राइवेट अस्पताल में कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाता है तो अस्पताल सिर्फ अपने ऑपरेशन थिएटर का चार्ज, डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्चा लेता है, कॉर्निया यानी आंख का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। और नेत्रदान केवल निस्वार्थ सेवा और दान की भावना से किया जाता है। कोई भी आई बैंक या डॉक्टर न तो आँखें खरीदने के लिए पैसा दे सकता है और न ही आँखें बेचने के लिए पैसा ले सकता है। मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसका शायद आपको पता था या नहीं था, लेकिन अब रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। दोस्तों, वैसे तो हमारे पास कार्यक्रम में बहुत समय है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बातें जो हमारी है ना अभी पेंडिंग पड़ी हुई वो ज़्यादा हैं और समय कम है, क्योंकि देखिए ना मुझे तो आपसे बातें करनी है पुराने समय की। तो पुराने समय में चलते हैं फिर। तो चलिए, तैयार हैं आप? मैं तो बिल्कुल रेडी हूं।

भाई देखिए ना, पुराने समय में हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती थी, आज कैसे होती है? मम्मी बोलती है, चलो उठो जल्दी से, स्कूल जाना है, ब्रश कर लो। आज टूथपेस्ट और ब्रश से हमारे दिन की शुरुआत होती है। पहले ये कहा जाता था, उठो, थोड़ा सा पानी पी लो, ताकि वो जो पूरा सलाइवा है मुंह का, वो आपके पेट में चला जाए और वो अच्छी चीज़ होती है। बुज़ुर्गों को ये बात पता थी। और सुबह की शुरुआत वैसे अगर हम ऑफिशियली बोलें तो दातुन से होती थी, मंजन से होती थी। और हमने भी अपने समय तक तो मंजन देखे हैं, जो कि या तो मार्केट से लेकर के आया जाता था या फिर घर में ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग दादी नानी हैं वो बना लिया करती थी। और मुर्गे की बांग से होती थी। आज मोबाइल का अलार्म या फिर कईयों के पास अभी भी घड़ी भी है, तो घड़ी का जो अलार्म होता है वो तो बड़ी तेज बजता है और कोशिश उसको की जाती है कि अपने से थोड़ा दूर, बेड से दूर रखा जाए, ताकि उसको बंद करने के लिए हमें उठना ज़रूर पड़े। क्योंकि अगर हम उठेंगे नहीं, बेड के पास ही रख लेंगे और वो बजेगा तो हम फटाफट से उसकी घंटी को बंद कर देंगे और फिर से सो जाएंगे। और प्यारे प्यारे से जो पंछी कलरव करते थे उससे होती थी, लेकिन आज कंक्रीट के जंगल बन गए हैं ना, तो वहाँ पर पंछी वंछी नहीं दिखते हैं। बड़ा ही कोई बिरला ही किस्मत वाला होगा, कोई अपनी छत पर दाना वगैरह डालता होगा। बालकनी पर छतें भी कहाँ मिलती हैं सभी को, इतने खुशहाल तो हम नहीं हैं कि सबको छत मिल जाए, क्योंकि वो स्टोरीज़ ऊपर से ऊपर होती हैं ना, तो किसी एक को ही मिल पाती है छत, तो बालकनी होती है। जिसकी बालकनी में दाना होगा वहाँ पंछी फिर भी आ जाते हैं। तो पंछी, जानवर, इन सब से हमारी दोस्ती होती थी। और क्या क्या होता था जानना चाहेंगे ना, चाहेंगे क्या? आपको तो पता ही है, बस केवल बने रहिए हमारे साथ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में कुछ बातें हों जो हम यहाँ से ना कह पाएं, हाँ शायद हो सकता है हम स्किप कर दें, तो उसके लिए आपके पास फ़ोन नंबर है, नंबर बता दिया है मैंने, 7018117091, फिर से बता देती हूँ। तो ये है हमारा फ़ोन नंबर, आप ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा। पर फिर से अभी फिलहाल आपको लिए चलती हूँ एक और गीत की ओर। तो चलिए, नैनो की बात कर रहे थे ना, ये भी नैनो का ही गीत आ गया है। गेस कीजिए कौन सा गीत है, मुझे लगता है आपने कर लिया होगा, तो आइए सुनते हैं।

गंगा जमुना फिल्म से अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला।

आज बताओ, आज पूरे भारत में ईद मिलाद, जिसे कि मिलाद उन नबी या मावलिद भी कहा जाता है, मनाई जा रही है। ये दिन मुस्लिम समुदाय के लिए एक बेहद पाक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये त्यौहार इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म की खुशी में मनाया जाता है।

इस्लामिक साल के तीसरे महीने रबीउल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। मस्जिदों और घरों में मिलाद और नात की महफिलें सजती हैं। लोग उनकी जीवनी यानी सीरत पढ़ते और सुनते हैं। लोग हाथों में हरे झंडे लेकर शांति मार्च या फिर जुलूस निकालते हैं, जिसमें भाईचारे और अमन का संदेश दिया जाता है।

इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना, कपड़े बांटना और दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मस्जिदों, घरों और बाजारों को खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है।

हज़रत मोहम्मद साहब की जो टीचिंग्स हैं यानी शिक्षाएं हैं, उनमें उन्होंने हमेशा अमन, शांति, दया और इंसानियत का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि भूखे को खाना खिलाना और किसी के काम आना ही सबसे बड़ी इबादत है।

0: मत करो।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ ओणम भारत के केरल राज्य का सबसे प्रमुख और भव्य फसल उत्सव है, जो हर साल मलयालम कैलेंडर के महीने पहले महीने चिंगम यानी अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। मुख्य रूप से पौराणिक कथा असुर राजा महाबली के अपने प्रजननों से मिलकर के धरती पर आने की खुशी में मनाई जाती है।

सिद्ध यह होता है कि राजा महाबली के न्यायप्रिय शासन से भयभीत होकर के देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और महाबली को भेज दिया पाताल लोक, लेकिन उन्हें हर

चावल और पायसम यानी खीर शामिल होती है। और इसी दौरान जैसे हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर कि हम हमारी नाटी वगैरह होती है, उसी तरह से वहाँ पर उस दौरान वल्लम कली यानी प्रसिद्ध नाव दौड़ और कथकली नृत्य तथा पुलिकली यानी बाघ नृत्य जैसे रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

श्रोताओं, आप बने हुए हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो हमारे जो पुराने दिन थे ना, उसमें लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, और जब डाक बाबू आता था तो कोशिश ये होती थी कि वो ख़त लिख भी दे और जो ख़त आया है उसे पढ़ कर के सुना भी दे, और फिर अगर ख़त में कोई ऐसी वैसी बात लिखवानी हो अपने प्रियतम को तो फिर शर्माया भी जाता था, समझ में नहीं आता था कि आखिरकार उसे कैसे बताया जाए। तो आपने भी एक्सपीरियंस किए हैं ऐसे कुछ दिन?

तो न तो खत लिखना आता था, न ही खत पढ़ना आता था। तो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश हमेशा होती थी, या फिर आतुरता इतनी होती थी कि डाकिया आएगा और उसी से लिखवा भी ले।

और यही ना काम की बात कि जब सब चीज़ें अपने मन मुताबिक हो जाती थी ना, तो फिर डाक बाबू को इनाम भी दिया जाता था, या फिर उस व्यक्ति को, उस बच्चे को जो कि पढ़ना लिखना जानता था और ख़त को लिख देता था, तो कुछ ना कुछ, जिसको कहते हैं ना चूरी हमारी आज की भाषा में, कि बाजी खा लेना, तो उसी तरह से एक टॉफ़ी या कुछ थोड़े से पैसे, आना दो आना दे दिया जाता था कि जाए और अपने मनपसंद की चीज़ें ले लें हाट बाज़ार से।

0: श्रोताओ, अब हम चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो हिंदी समाचारों के लिए।
1: बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं, इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इसमें पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया कि वह बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

92.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम यादों की झरोखों की। जी, आपको हम लिए चल रहे हैं पुराने समय में एक बार फिर से वापस। तो कुछ झरोखे तो हमने खोल दिए हैं, कुछ अभी भी बंद हैं जो खोलने बाकी हैं। और जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है उनके लिए भी बता देते हैं कि आज पुराने समय की बातें हो रही हैं। अब चाहे वो आप गांव में रहते थे या फिर आप शहरों में ही रहते होंगे, लेकिन बातें तो पुराने समय की ही हो रही हैं। तो दोस्तों, आज पता है जब मैं सुबह उठी तो न जाने क्यों दिल के किसी कोने से एक ठंडी हवा का झोंका आया, और वो झोंका जो आज हमें इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर उस दौर में ले जाता है जहाँ सुविधाएं भले ही कम थी पर मन का सुकून और चैन था बेहिसाब। जब घर में सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, लेकिन ये दौर शायद उससे भी पहले है जब टीवी भी नहीं हुआ करता था, तो जब टीवी आया तो पूरा मोहल्ला एक साथ बैठ करके रामायण या चित्रहार देखा करता था। और आज हमारे पास पांच पांच स्क्रीन्स हैं, हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन वो साथ बैठ करके हंसने का सुकून चैन कहीं खो गया है। जानती हूँ दोस्तों, वक्त की सुइयाँ पीछे नहीं घूम सकती। हम बहुत आगे निकल आए हैं और उस दौर में वापस लौटना अब नामुमकिन है, लेकिन उन दिनों को याद करके मुस्कुराना तो मुमकिन है ना। उन लम्हों को दोबारा जीना तो हमारे हाथ में है। तो पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे, यानी मैं बात कर रही थी उस पुराने रील वाले कैमरे की। याद है कैसे हम गांव की गलियों में निकल जाते थे तस्वीरें खिंचवाने? वो गांव की मिट्टी, वो नीम की छांव, एक कैमरे के सामने स्माइल प्लीज सुनते ही चेहरे पर आने वाली वो सच्ची से मुस्कान। आज तो फोन में हजारों तस्वीरें हैं पर वो एक अदद एल्बम वाला एहसास जो संदूक में रखी यादें बन जाई या फिर बन गई हैं वो कुछ अलग ही होती हैं। अगर आपको अचानक से कोई एल्बम मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। सारा काम वाम छोड़ करके उस एल्बम को देखने के लिए बैठ जाते हैं आप सभी लोग। आप क्यों, हम भी तो, और ख़ास करके हमारे बच्चे एल्बम पकड़ के बैठ जाते हैं कि आखिरकार है क्या उन तस्वीरों में, और फिर वो ढूंढते हैं कि ये चाचा जी, ये ताऊ जी, ये मौसी, अरे ये कैसे दिखते थे सब, और देख करके कई बार तो हंसते भी हैं। और हमारे चेहरे पर भी अनायास सी एक मीठी सी मुस्कान आ ही जाती है। तस्वीरों की बात हम कर रहे थे तब, और तस्वीर से संबंधित ही ये गीत, आइए सुनते हैं।

जिद्दी फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्स रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और आज बात करते हैं इस समय मदर टेरेसा की, जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। 26 अगस्त 1910 में उनका जन्म हुआ था। अल्बानियाई परिवार में मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन थी, जिन्होंने बाद में स्वेच्छा से 1948 में भारतीय नागरिकता ग्रहण की। 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और 45 वर्षों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरणासन्न लोगों की सहायता करती रही और मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रसार का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उनकी मृत्यु के बाद पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें धन्य घोषित किया और उन्हें कोलकाता की धन्य की उपाधि भी प्रदान की।

और हम भी यही कहेंगे कि मदर टेरेसा वाकई में हमारे देश के लिए धन्य ही थी। इतने लोगों की निस्वार्थ सेवा करना और वो भी बीमार लोग, सबके बस की बात नहीं होती है कि जिनके पास पैसे भी नहीं हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, अनाथ हैं, बिल्कुल शैया पे हैं, मृत्यु शैया पे। पर कहते हैं ना कि मन में जब एक भाव आ जाता है तो उसके सामने फिर सब कुछ छोटा लगता है। तो कुछ ऐसा ही भाव उनके मन में भी आ चुका था। और हमारे मन के भाव आजकल कितने अलग हो गए हैं ना। हम सड़क में पड़े किसी बेसहारा बेबस व्यक्ति को देख करके ऐसे आँखें टेढ़ी करके चले जाते हैं कि हमने कुछ देखा ही नहीं। छोड़ो, होगा कोई, होगी कोई उसकी अपनी मजबूरी, हमें क्या लेना है ना। ना उसके पास जाते हैं, ना पूछते हैं कि शायद कहीं हम यहाँ फंस ना जाएं, कि हमारा शायद कोई थोड़ा सा समय बर्बाद ना हो जाए। खैर, चलिए ये सब बातें तो यूं ही चलती रहेंगी, हम भी चलते हैं कार्यक्रम में, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

0: चलो, बाहर बारिश हो रही है, यहाँ तो हमारे स्टूडियो के बाहर बहुत तड़ातड़ है।
1: पहले दिल की बात क्षमा पर
0: और साथ में रात भी ढलती जा रही है।

हसिया सुल्ताना फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आपने सुना, और हम भी तो यही कह रहे हैं कि 7018111701 पर हमसे कॉल करके बात कर लीजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम भी तो अब ढलता ही जा रहा है।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आप जानते ही हैं 8 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम रहता है। और बात कर रहे हैं साथ ही साथ हम पुराने समय की। आज भले ही दुनिया डिजिटल हो गई है, लेकिन इन भूली बिसरी यादों को हम अपने दिल के किसी कोने में सहेज कर प्रिजर्व करके हमें रखना ही होगा। जानते हैं क्यों? ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, आज के बच्चों को बता सकें कि प्यारे बच्चों, एक दौर ऐसा भी था जब इंटरनेट नहीं था तो हम दोस्तों के चेहरों को पढ़ा करते थे, जब गूगल नहीं था तो दादी नानी की कहानियां हमारा ज्ञान हुआ करती थी। तो चलिए फिर आज इस सफर पर मेरे साथ आगे बढ़िए, अपने दिल के दरवाजे खोलिए और मुझे बताइए कि कौन सी एक याद है जिसे आप आज भी अपने सीने से लगा करके रखते हैं। तो बताने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉल करना होगा या फिर मैसेज भेज सकते हैं आप।

वैसे अगर मैं कहूँ तो उस समय काम ज़्यादा होता था, तो हमारे शरीर जो थे ना वो ठीक रहते थे, हम फिट रहते थे, हम मतलब हमारे माता पिता, हमारे बुज़ुर्ग। आज सुख सुविधाएं बहुत हैं, फिर भी काम ख़त्म नहीं होते हमारे, हमें समय ही नहीं मिलता है। हम ये कहते हैं ना, अरे भाई टाइम ही नहीं है, और शरीर भी तो नहीं है हमारे पास, यानी हमारे जो शरीर हैं वो बिल्कुल खोखले हुए पड़े हैं, सिर्फ चमकते हुए से चेहरे हैं। समझ गए ना मेरी बात? मतलब चेहरा ऐसा कि पता ही नहीं चलता कि शरीर में कोई व्याधि भी है या विडंबना। तो ये है कि खान पान भी हमारा ऐसा ही हो गया है कि हमारे शरीर हो गए हैं खोखले, परंतु बस हम अपनी बाहरी चमक दमक को संवारने में लगे हुए हैं। अरे वो तो उस समय भी संवरती थी, ज़रा सा मक्खन निकाला और हाथ में लगा रह गया तो फटाफट वो अपने चेहरे पर भी लगा लिया जाता था, और सामने अगर कोई बच्चा बैठा है तो उसके चेहरे पर भी मल दिया जाता था बिना उसकी इजाज़त के। आप देखते हैं हमारी दादी नानियों के चेहरे आज भी कितने ग्लो करते हैं बिना किसी क्रीम के। और भी बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो कि हम बातें करने लगेंगे ना तो कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा, पर बातें ख़त्म नहीं होंगी, वो यादें ख़त्म नहीं होंगी। इसीलिए आपसे कह रहे हैं, अगर मन में कुछ है तो यहाँ पे उड़ेल दीजिए।

बंदिनी फिल्म का गीत अभी आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और श्रोताओ, एक कॉल हमारे पास आई थी लेकिन डिसकनेक्ट हो चुकी है। हम चाहते हैं कि जो भी श्रोता हैं प्लीज़ दोबारा से कॉल करें और अपने मन की बात करें हमसे।

देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कार्यक्रम में कि बातें बहुत सी हैं, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा पर बातें हमारी खत्म नहीं होंगी। किसको किसको याद है कि खिंद खंदोले भी बनाए जाते थे। आज तो हम कहते हैं ना, हाँ इन सब चीज़ों का क्या करना है, इतने बड़े बड़े बक्से पेटियां भर भर के रखी हुई हैं, फेंको इनको बाहर, और बने बनाए गद्दे वद्दे मिल जाते हैं सब, बस पैसा फेंको और सब हो जाता है, सब मिल जाता है आजकल। हाँ, तब नहीं मिलता था। एक ये भी बात थी कि लोग अपने घरों में बना लिया करते थे और रख लिया करते थे कि अगर अचानक से कुछ मेहमान आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे भाई, तो कम से कम नीचे बिछाए, ऊपर चद्दर बिछाई और सो तो गए। और आज ये कहा जाता है कि अगर इन सब चीज़ों को संभाल संभाल के हम रखेंगे तो हमारा जो घर है वो घर कम गोदाम ज़्यादा लगेगा। तो भाई, वक्त वक्त की बात है, ज़रूरत की चीज़ें तब लगती थी, आज कबाड़ लगता है। और दुख पता है किसे होता है? दुख होता है उनको जिन्होंने अपने हाथों से वो खंदुई के साथ सिला होता है। वो एक सुई होती है ना, एक जो बड़ी लंबी सी होती है जिसके साथ वो कपड़े वगैरह सिले जाते हैं खूब घुसा घुसा के उसको अंदर, तो वो होती है खंदुई, उसको हम खंदुई कहते हैं। तो उससे सिलती थी हमारी दादी नानियाँ। तो जब हम उनके सामने कह देते हैं ना इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तो उन्हें बड़ा दुख लगता है। अब कोई मेहनत करेगा तो उसे दुख ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कपड़े कम होते थे तब, पर संभाल के रखे जाते थे क्योंकि वॉशिंग मशीन्स तब नहीं होती थी, है ना। और आज इतने सारे कपड़े हमारे पास होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, कुछ कुछ तो रखे रखे छोटे भी हो जाते हैं, हम ना बच्चों को पहनाते हैं ना खुद पहनते हैं, और फिर देखते हैं कि अरे वो छोटे हो गए, या फिर उनका रंग फेड हो गया पड़ा पड़ा ही, या कुछ भी और हो गया है, लेकिन हम रखे रखते हैं, देने का भी किसी को मन नहीं करता कि नहीं भाई, हमने तो बड़े अरमानों से ये चीज़ खरीदी थी। पहले ऐसा नहीं होता था, एक ही कपड़े को न जाने कितनी कितनी बार धोया सुखाया पहना जाता था। और हाँ, मिट्टी के घड़ों का पानी वो भी दूर दूर से ढो करके लाना, एक एक बूंद पानी की कीमती थी, तब हमें पता था। आज बेवजह बहता है, कोई पूछ ही नहीं रहा, फिर भी हर चीज़ के लिए हम दिन मनाते हैं, दिवस पानी का दिवस है ना, वाटर डे, जल दिवस, और भी न जाने कितने दिवस, पेड़ों का भी दिन है, अब तो गोरैया का भी दिवस होने लग पड़ा, क्योंकि ये चीज़ें खत्म होती चली जा रही हैं। थोड़ा सा चेत जाइए, आप लोग जाग जाइए। हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ पुराने दिनों में ही वापस चले जाइए, वो तो जब प्रकृति लेकर जाएगी तो जाना ही पड़ेगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी और विकास हो, और विकास के नाम पर क्या क्या हो रहा है वो भी आप सभी लोग देख ही रहे हैं। लेकिन खैर, विकास रुकना नहीं चाहिए, विकास तो हमेशा होते ही रहना चाहिए, चाहे वो हमारा अपना हो, पर्यावरण का हो, प्रकृति का हो, बच्चों का हो, घर का हो, खेतीबाड़ी का हो, किसी भी चीज़ का हो, है ना। और बात करें हम त्योहारों की, तो त्योहारों में भी अपनापन जो है वो कम हो गया है। अब त्योहारों पर भी ये देखा जाता है कि भाई अब त्यौहार आ रहे हैं, कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ कहाँ पर क्या क्या खर्चा हमने करना है, या अमुक त्यौहार आ रहा है तो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, यानी कि ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, तो ऐसा लगता है ना कि प्यार कम हो गया है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, अपने हाथों से ही घर में ही मिठाई शिठाई बना ली जाती थी, और जो भी थोड़ा बहुत आपस में बच्चों को बांट दिया जाता था। अरे राखियां तो हमने भी अपने हाथों से खुद बनाई हैं, दूर क्यों जाना है। मैंने
बहुत समय तक राखियाँ बनाई। और मेरी जो माँ है ना, वो तो मेरी शादी के बाद भी मांगती रहती थी कि अगर तूने राखी बनाई है तो भैया मुझे भेज दे, मेरे को अपने भाइयों को बांधनी है। और अगर राखी नहीं भी होती थी ना, तो वो एक रेशम का कच्चा धागा ही काम कर जाता था। चलिए, कुछ और बातें भी हैं, हम करेंगे ज़रूर आपसे। लेकिन देखिए, हमें नहीं लगता है कि आप उन दिनों में वापस जाना चाहते हैं, या कोई भी याद उन दिनों की आपने अपने दिल में संजो करके रखी है। हम आपको कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ से बताने की, लेकिन आप लोग कोई फ़ोन नहीं कर रहा। एक आया था, अब वो महाशय भी पता नहीं कहाँ है। अब नहीं पता है मुझे कि ये किसी मेल का फ़ोन था या फीमेल का था, जो भी था, लेकिन चलिए एक फ़ोन तो हमें आया था। इंतज़ार में हैं भाई हम, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। और अब हम प्ले कर देते हैं एक और गीत।

शतो गरम मसाला फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो बात वही यादों के झरोखों से, घर में 10 मेहमान और वो भी अचानक आधम के, घर वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता था, सब इंतज़ाम में लग जाते थे और सबका इंतज़ाम हो भी जाता था, या तो छत पर या फिर किसी एक ऐसे कमरे में बिस्तर लगा दिया जाता था, बिछा दिया जाता था नीचे ही, और सब आराम से वहीं सो जाते थे। कोई चिंता ही नहीं कि क्या खाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, फटाफट से सब लोग एक साथ मिल करके रेडी कर लेते थे सब कुछ, क्योंकि किचन एक ही होती थी ना। परंतु आज तो फ़ोन है और सबके कमरे भी अलग अलग हैं, और फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि एक दो मेहमान भी आ गए तो इंतज़ाम कैसे होगा, और अगर कोई बिना बताए आ गया तब तो और तरह की मुसीबत। कई बार तो उसे सुना भी दिया जाता है कि भाई फ़ोन ही कर देते। और ऐसा नहीं है कि हाट बाज़ार वहाँ पर पास पास में होते थे, आज तो आपको घर से बाहर पांव रखते हैं तो मार्केट मिल ही जाती है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है ना, कम से कम एक आधी दुकान तो खुली ही होती है हर गांव में, हर बस्ती में आजकल तो है ही। परंतु फिर भी हमारे जो दिल है ना वो संकुचित हो गए हैं। अब मैं सब लोगों की बात तो नहीं करूंगी कि सभी एक जैसे ही हो गए हैं, भाई समय बदल गया है, और हाँ समय के साथ बदलना भी तो ज़रूरी है, लेकिन इतना बदल जाएंगे हम कि हमें पता ही नहीं कि हमारा पड़ोसी कौन है। पहले गांव में लड़कियों की जो शादियां होती थी ना वो सारा गांव मिल करके करता था, या फिर लड़कों की भी, कोई अपने घर से कुछ ला रहा है, कोई चारपाइयाँ उठा के ला रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है, मतलब एक उत्सव का माहौल सा होता था। लेकिन आज वेट किया जाता है कि इनविटेशन आएगा, इनविटेशन अगर गलती से नहीं आया तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, मनमुटाव भी हो जाते हैं। तो देखा फिर समय किस तरह से बदल गया और इतनी तेजी से बदल रहा है। भाई अगर नहीं मिला इनविटेशन तो कोई बात नहीं, आप इनवाइट कर लेना जब आपके यहाँ पे कोई कार्य होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां से नहीं आया ना बुलावा, हम भी नहीं बुलाएंगे। अच्छा हुआ एक छूट गया परिवार, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और हम भी आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, चलते हैं प्रादेशिक समाचारों की ओर।

मैंने पहले ही कह दिया था कि बहुत सारी बातें ऐसी ज़रूर होंगी कार्यक्रम में जो कि शायद रह गई होंगी। चलिए इन्हें कंटिन्यू करेंगे फिर किसी और कार्यक्रम में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खेलो इंडिया संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संबोधित। प्रदेश में आउटसोर्स पर स्टाफ नर्सों की भर्ती नहीं करेगी सरकार। कोविड महामारी में हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने की व्यवस्था। राज्य के 147 CBSE स्कूलों में 30 सितंबर तक कर दी जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति। 100 और स्कूल होंगे CBSE। विधानसभा में राष्ट्रीय गीत पर विवाद को लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले शैक्षणिक सत्र से एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम खत्म करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद युवा प्रतिभागियों, माय भारत के स्वयंसेवकों, स्थानीय खिलाड़ियों और जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय स्तर पर संवाद होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में आउटसोर्स भर्ती को कम करेगी और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्सों की नियुक्ति आउटसोर्स माध्यम से नहीं की जाएगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक दीपराज के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नर्सों की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी और अगले 4-5 महीने में सभी मेडिकल कॉलेजों में योग्य नर्सों की तैनाती का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान टांडा मेडिकल कॉलेज और IGMC में आउटसोर्स आधार पर रखे गए कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी भर्तियां राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी, जिससे कर्मचारियों के नियमितीकरण में कोई बाधा न आए।
1: सभी मेडिकल कॉलेज में पहला चरण मेडिकल कॉलेज में कोई भी आउटसोर्स पर भर्ती नहीं होगी और आउटसोर्स पर जो भर्तियां हुई है उनको चला रहने दिया जाएगा। नई नियुक्ति आउटसोर्स पर नहीं होगी और जो आउटसोर्स पर हमारी स्टाफ नर्सों की चली गई है उनकी जगह भी नहीं भरी जाएगी, सिर्फ रेगुलर और टीम बेस्ड भर्ती होगी ताकि आउटसोर्स कॉलेज का सिचुएशन होता है खत्म हो जाए और जो टीम बेस्ड होती है वो राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा और आने वाले समय में रेगुलर करने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
0: उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जलवाहक और पैराफिटर कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स माध्यम से नहीं होती, ये विभागीय नीति के तहत लगाए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति के अनुसार मिलने वाले लाभ दिए जाने जरूरी हैं और यदि किसी आउटसोर्स एजेंसी ने कर्मचारियों के वेतन में गलत तरीके से कटौती की है तो सरकार इसकी जानकारी देने पर कार्रवाई करेगी। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 147 CBSE स्कूलों में 30 सितंबर तक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों की संख्या बढ़ाने पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन CBSE स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता के मानक तय किए गए हैं और चयन में मेरिट 80% तक रही है।
1: CBSE की भर्ती के टीचरों की हमने डेडलाइन 30 सितंबर तक दी है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। म्यूजिक भी हम स्टार्ट करें CBSE स्कूलों में और जो हमारे टीचरों ने इंटरव्यू देकर सेलेक्ट हुए हैं, जैसे प्रिंसिपल सेलेक्ट हुए हैं, निर्देश दिए हैं कि उनके भी इंटरव्यू करके उनकी नियुक्ति भी CBSE स्कूलों में कर दी जाए।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 100 और स्कूलों को CBSE से जोड़ेगी और दूसरे चरण में अन्य स्कूलों को भी इस व्यवस्था में लाने पर विचार किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा, राकेश जम्वाल और हंसराज ने भी आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित सवाल पूछे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय बड़ी संख्या में आउटसोर्स एजेंसियां और ठेकेदार तैयार कर दिए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेगा या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न ले। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
3: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
2: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निशुल्क उपलब्ध है।
3: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को लेकर शुरू हुआ विवाद, अब मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस तक पहुंच गया है। विपक्ष ने आज मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
4: प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के कथित अपमान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और गर्मा गया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी वीडियो को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि वीडियो सामने आने के बाद साफ हो गया है कि राष्ट्रगान का किसी भी तरह से अपमान नहीं हुआ है और इस संबंध में मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाए गए आरोप गलत साबित हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ आज विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।
5: कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन, राष्ट्रगान का अपमान किया। पिछले काल वीडियो क्लिपिंग देखने के बाद राष्ट्रीय गान जनगण मन पूरे सम्मान के साथ गाया है तो अनावश्यक रूप से बहुत बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया। ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर जो झूठ बोला, ऐसे में हमको विधानसभा अध्यक्ष महोदय को प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहिए और अभी हम अध्यक्ष महोदय को मिलकर के प्रिविलेज मोशन मुख्यमंत्री के खिलाफ देकर के आए।
4: वहीं भाजपा के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा लगातार झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।
6: भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय गान का अपमान कैसे किया है? राष्ट्रीय गान तो सबने गाया, लेकिन राष्ट्रीय गान के बाद उस पर उंगली उठाएगी, यही अपमान होता है। राष्ट्रीय गीत भी कांग्रेस पार्टी की देन है, राष्ट्रीय गान भी कांग्रेस पार्टी की देन है। जब सदन की परंपराओं का ये ध्यान नहीं रखेंगे तो इस प्रकार से कंफ्यूज बीजेपी अपने आप को इस तरह पाएगी। जयराम ठाकुर जी, अब उन्होंने क्वेश्चन उठाया तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय गान का जो भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया उसके लिए हम जनता की अदालत में।
4: विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रीय और राष्ट्रगान के कथित अपमान के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले शैक्षणिक सत्र से एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम खत्म करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज में जाति के नाम पर भेदभाव को खत्म करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल के दाखिला फॉर्म में जाति का कॉलम खत्म करना इस दिशा में एक शुरुआत होगी ताकि बच्चे किसी हीन भावना से ग्रस्त न हों। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के लोग अपनी जाति का कॉलम भर सकेंगे ताकि उन्हें इन योजनाओं का लाभ निर्बाध प्राप्त होता रहे।
6: अगली बार से जो

0: मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस अवसर पर सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की वन संपदा हमारी अमूल्य धरोहर ही नहीं बल्कि ये प्रदेश की जलवायु का संरक्षण भी करती है। उन्होंने वनों के संरक्षण और अधिक से अधिक पौधरोपण करने पर बल दिया। सुनील शर्मा बिट्टू ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के वनों के संरक्षण के साथ साथ पौधरोपण के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना आरंभ की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों, महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधरोपण व इन पौधों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इससे प्रदेश का हरित आवरण बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खेलो इंडिया संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संबोधित। प्रदेश में आउटसोर्स पर स्टाफ नर्सों की भर्ती नहीं करेगी सरकार। कोविड महामारी में हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने की व्यवस्था। राज्य के 147 सीबीएसई स्कूलों में 30 सितंबर तक की जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति। 100 और स्कूल होंगे सीबीएसई। विधानसभा में राष्ट्रीय गीत पर विवाद को लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले शैक्षणिक सत्र से एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम खत्म करने के दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: चलते चलते कार्यक्रम का ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए कार्यक्रम से अनुमति। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संदीप परमार।

0: पानी में भैया
1: से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: ये कहाँ से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक और प्रतीक

राखी का असली मकसद सिर्फ एक कलाई तक सीमित रहना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब

के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तू मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
9: ओह नो, यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता।

0: गैस पानी में भैया
1: से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: ये कहाँ से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक और प्रति

राखी का असली मकसद सिर्फ एक कलाई तक सीमित रहना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। तुम मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
8: ओह नो,
9: इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
10: काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।